कहे रविदास भगत एक बाडी अब एक आप से कहिए जा कारण हम तुम्हारा दे सो दुख जो सही है दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो बिरता जात बिके राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भक्त कहू कह लेखे ना विचारियो राजा राम को रास जे रस अनरस बिसर जाहि राम जान जान पहे हम बावर सोच सोच दिवस जाए इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमारत पर भीष नहीं कहियत आन अचियरत नकश समझ न परे अपर माया कहर दास दास दास मत पहर कूप करो जी दया सुख सागर सुरतर चामन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनित कर तलता के हर हर हर हर हर हर जप ना जप जपे रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ नाना ख्याल परान बिद बिद चौथी से अखर माही ब्यास विचार के हो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाध अपाद रहत पुन बड़े पाग लिब लागे कहिर विदास प्रगास हृदय तर जन मरन पह पागे जो तो गिरबर तो हम मोरा जो तुम चंद तुम हम पहे है चकोरा माधवे तुम न तोरो तुम हम नहीं तोरे तुम स्यों तोर कबन स्यों जोरे राम जो तुम धीवरा तो हम भाती जो तुम तीर्थ तो हम जाते साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोरे वर संग तोरी जय जय जाऊं तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकर और न देवा हमरे भजन कटे जम पासा भगत हित गावे रविदासा जल की पीत पवन का पंदा रत रत बूंद का गारा हांड साम नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरबर पंख बसेरा राम राखो कंध सारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा बंके बाल पग सिर डेरी इवतन होग पसम के टेरे उचे मंदर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी मेरी जात कमीनी पात कमीनी होशा जन्म हमारा तुम सरनागत राजा राम चंद कहे रविदास चमारा चमरट्टा गाठ न जनही लोक गडावे पनही रहा आर नहीं जय तोपो नहीं राम वीर ना ठाओ रोपो लोग गट गट खरा बिगुचा बिन हूं बिन गाठे जाए पहुचा रविदास जपे रम नामा मोह जम से नाही कामा राग सूरट बाणी भगत पीखण की इक ओंकार सतगुर प्रसाद नैनो नीर बहे तन कीना पहे के सुदुद बानी रूंदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे पराने राम राय है होए बैद बन बारी अपने संत लियो बारी राम माथे पीर सं शरीर जलन है करक कलेजे माही ऐसी बेदन उपज खरी वे भाको औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल औखद जग सारा गुर प्रसाद कहे जन पीकन पावो मुख द्वारा ऐसा नाम रतन मोलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राख्या रतन छपे छपाया हर गुण कहते कह न जाई जैसे गुंगे की मठियाई रहाओ रसना रमत सुन सुख सर्वना चित चेते सुख होए कौ पीकन दो नैन संतोखे जय देखा तह सोए तनासरी महला पहला कार पहला चौप दे इक कार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर काल मूरत जुनी सह पंगुर प्रसाद जियो डरत है अपना कह के कैसे करी पकार दुख बिसारन सेविया सदा सदा दतारा साहिब मेरा नीतनवा सदा सदा दतार रहा अंदन साहिब सेविये।

सेवा सो करे जाको नदर करे। तुद बाज प्यारे के वरहा सा बड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए जिसे आगे।

0: ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਲ ਨਾਹੀਂ ਜੋਗ ਨਾਹੀਂ ਨਾਹੀਂ ਸਤਿਕਾ ਢਾਬਾ ਥਾਨ ਸੱਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਹੋਏ ਡੁਬਦਾ ਏਵ ਜਗ ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮੀਚੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਆਂਠ ਸੀਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਸੂਝਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋ ਮਗਰ ਪਾਛੇ ਕਛੁ ਨਾ ਸੂਝੇ ਇਹ ਪਦਮ ਲੋ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋਡਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਪਾਖਿਆ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਇਕ ਵਰਨ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੇ ਅਸ਼ਟ ਸਾਜ ਸਾਜ ਪ੍ਰਾਣ ਸੋਧੇ ਕਰੇ ਬੇਦ ਵਿਆਸ ਬੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਾਹੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪ ਕਵਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਤੂੰ ਮਲ ਆਲੋ ਪਵਰ ਚਬਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਜੰਤ ਪੇਰੀ ਰਾਮ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਇਕ ਤੋਹੇ ਸਹਿਸ ਪਦ ਵਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਬ ਚਲਤ ਮੋਹੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਕੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨਦਿਨ ਮੋਹਿਆ ਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਾਸਾ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਚੌਪ ਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹੋ ਧਨ ਨਖੁੱਟ ਨਾਨਕ ਕੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਬਲ ਜਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਬਲਾਏ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਰਾਉ ਅਵਗਣ ਕਾਟ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮੁਖ ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਏਕ ਚਰਜ ਜਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ ਨਾਮ ਮੁਲਕ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਸਾਮੇ ਬਸੇ ਪ੍ਰਵੇਕੋ ਸੋਏ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਪਾਰਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਨਾਮ ਧਨ ਬਿਨ ਹੋਰ ਸਭ ਇਕ ਜਾਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਜਲੇ ਅਭਿਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਰਸ ਚਾਕੇ ਕੋਏ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਾਮ ਸਭ ਦੀਪਕ ਵਰਤੇ ਤੇ ਲੋਏ ਜੋ ਚਾਕੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਹੋਮੇ ਮਲ ਧੋਏ ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਚਾਕਿਆ ਸੋ ਹਰ ਜਨ ਲੋਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹਰਖ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਸੋਗਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਪਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਹਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੂਹੀ ਬਿਲਾਏ ਅੰਦਿਨ ਦਜੇ ਸੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਪਾਏ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਦਾ ਧਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਏ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਲਿਬਲਾਏ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਪਾਵੇ ਅੰਤਰ ਵਿਗਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਰਾਮ ਇਹੋ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਧਨ ਪੇਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤ ਸਿਗਾਰ ਰਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਕੋਏ ਨ ਪਾਏ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਸੱਚ ਨਾਮ ਬੜਿਆਈ ਪਾਏ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਲਾਏ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤੀਜਾ ਜਗ ਮਹਿਲਾ ਮਹਿਲੋ ਹੋਏ ਜਾਏ ਆਵੇ ਜਾਏ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸਭ ਭਰਜ ਬਿਗੋਏ ਮਨਮੁਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਏ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸੇ ਪਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਰਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਹਰ ਸਰਨਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਭਗਤ ਦੜਾਏ ਭਗਤ ਘਰੇ ਜਨ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ ਸਾਚਰ ਤੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਸਾਚੇ ਕਾ ਗਾਹਕ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਜਾਣ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣ ਸਾਚੀ ਰਾਸ ਸਾਚਾ ਵਪਾਰ ਸੋ ਧਨ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਲਾਏ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵੇ ਤਿੰਨ ਵੱਲ ਜਾਉ ਤਿੰਨ ਹਿਰਦੇ ਸਾਚ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਨਾਉ साचो साच संभालियो दुख जाए साचे शब्द बसे मन आए गुरबाणी सुन मैल गवाए सहजे हर नाम मन बसाए राम कूड़ कसुत त्रिसनागन बजाए अंतर शांत सहज सुख पाए गुर के पाने चले ता आप जाए साच मैल पाए हर गुण गाए ना शब्द बुझे ना जाने बाणी मन मुखे अंधे दुख बयानी सतगुर पेटे ता सुख पाए हुमे बिचो ठाकर आए किसनु कहिए दाता एक सोए कृपा करे शब्द मिलावा होए मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साचा पावा तनासरी महला तीजा मन मरे तात मर जाए बिन मन मुए कैसे हर पाए एहो मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनु बख्से हर दे बड़ियाए गुर प्रसाद बसे मन आए रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सूझी पावे मन मैं मत मैं गलमिक दारा गुरु अंक समार जवालन हारा मन असाध साधे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुख मन लिया सवार उमे बिचो तजे विकार जो तरखियन मेल मलाए कदे न बिछड़े शब्द समाए अपनी कला आपे प्रभ जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काचा तन सांचे मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार विख्या के तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन फुनिया वह जाए राम मनमुख भूले सब मरे गवार पवजल रूबे ना उर बार ना पारा सतगुर पेटे पूरे भाग साच रते हैं बैराग चा जुग में अमृत साची बाणी पूरे भाग हर मां नाम समाणी से साधक तरसे सब लोए पूरे भाग प्राप्त होए सब कुछ साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म चाणे कोए सच साचा सच आप दड़ाए नानक आपे बेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिबलाए गुरमत साची साचा बेचार आपे बख्से दे बिचारा हर नाम अचरज प्रभा पसनाए कली काल विच गुरमुख पाए राम हा मूर्ख मूर्ख मन माहे उमे बिसवकार कमाए गुर प्रसादी उमे जाए आपे बख्श लए मै लाए बिख्या का तन बहुत अभिमान अहंकार डुबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमुख सलाई सच सोए आपे सरज साजे करता सोए तिस बिन दूजा वरना कोई जे सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे राग तनासरी महला तीजा कर चौथा इकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पैखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयार नाम देह मंगत जन को सदा रहो रंग राता हो बलिहारी जाऊं साचे तेरे नाम बिटो करन करन सबना काई को अवर ना दूजा कोई राव बहुत फेर पे कृपन को अब क्या अब किस कृपा कीजे हो दयाल दर्शन दियो अपना ऐसी बख्श करी जय पंत नानक परम पट खोले गुर प्रसादी जानिया साची देव लागी है पीतर सतगुर सिउ मन मानिया तनासरी महला चौथा कर पहला चौप दे कार सतगुर प्रसाद जो हर सेवे संत भगत तिनके पाप सब पाप निबारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारे हर गुण कह न सको बन बारे हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाकन हम तारी राम जन्म जन्म के लागे विख मोर्चा लग संगत साध सुबारी ज्यो कंचन वह संतर तायो मडल काटी कुटेत उतारे हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर उर तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर ओम मैं मारी हर हर अगम गोद बोध परम्पर पुरखा पारी जिनको कृपा करो जग जीव जग जीवन जन नानक पैज सुबारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपियो तिनका दुख परम पा पागे अपनी सेवा आप कराए गुरमुख गुरमते अंतर जागे हर के नाम रता बैरागे हर हर कथा सुनी मन पाए गुरमत हर लिब लागे राम संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलगबल आगे क्या हम किरम नानक की रे तुम बड़ पुरख बडागे तुमरी गत मित कह न सके प्रभ हम क्या कर मिले पागे हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागे नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथा गे तना श्री महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम तिसके सदकर बाणी हर के संत सुनो जन कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब किल बिख पाप लह जानी राम ऐसा संत जाद जिन पाया ते बड़ पुरख बडानी तिनकी टूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोचल चानी हर हर सपलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो ते से तरपतानी हर हर मत पी तरपतासे सब लाथी भूख पकानी जिनके बड़े भाग बड़े ऊचे तिन हर जपियो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महला चौथा अमंदले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाले सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाले गुरसख मीत चलो गुर चाले जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा नराली राम हर के संत सुनो जन पाई गुर सेव उबेग बिगाले सतगुर सेव कर चहर बांधो मत जानो आज के काले हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाले जिन हर जपया से हर होए हर मेलिया केल कलाले हर हर जपन जप लो चल जाने हर कृपा कर बन वाली जन जन जन नानक संग साध हर मेलो हम साध जना पगराले इतना श्री महला चौथा हर हर बूंद पहे हर स्वामी हम चात्रक बिल बिल लाते हर हर कृपा करो प्रभ अपने मुख देवो हर निमखाते हर बिन रह न सको एक राते ज्यों बिन अमले अमले मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रा तुम हर सर्व रत गा हम लह न सके अंत माते तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाते हर के संत जना हर जपियो गुरपू गुर रंग चलू ले राते हर हर भगत बनी अत सोभा हर जपियो तम पाते आपे ठाकर आपे सेवक आप बनावे पाते नानक जन तुमरी सरनाए हर राखो लाज पगाते तना श्री महला चौथा कल युगा धर्म कहो तुम पाई किव छूटे हम छुटकाके हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरे तराके हर जी लाज रखो जन हर जन के हर हर जपन जपावो अपना मांगी भगत काके राम हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना के लेखा चित्रगुप्त जो लिखया सब छुट्टी जमके बाके हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना के दिन यार सूर तृष्णा गुन बजाने शिव चरियो चंद चदाके तुम बड़ पुरख बड़ अगमे गोचर तुम आपे आप पाके जन नानक को प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाखी तनासरी महला चौथा कार पांजवां दो पदेक कार सतगुर प्रसाद और तार विचार मरार रमो रम मन मोहन नाम जपीने अदिष्ट गोचर परम्पर स्वामी गुरपूरे प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लूष्ट हर संग हरी सत्संग पहे हर कंचन चंदन कीने राम नवशे खटबूले मुख यागर मेरा हर प्रभ इबना पतीने जन नानक हर हृदय सत्य आवो हर प्रभ मेरा पीने तना श्री महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुरेव हर हर नाम ते आई हर दरगे पावे फिर जन्म न आवे हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी है बहुत जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छाई राव हर कृपा ते निध कहनी गुर भगत हर दीनी तब हर सिमरीत बने आई बहु चिंत बिसारी हर नाम उतारी नानक हर पहे है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पब जल पार उतारी मन बचन हृदय ते आए हर होए संतोष्ट इपन हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राते हर कीर्त कर बनवारी राम हर हर करी दृष्ट तब पियो मन उद्यम हर हर नाम जपियो गत पही हमारी जन नानक की पतराख मेरे स्वामी हर आय परियो है सरन तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तीस मुकोट मुन जन सब चाहे हर सिंह तीरो नाऊ गुरप्रसाद को बिरला पावे जिनको लार लिखे तुर पाओ जप मन रामे नाम हर जप उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हूँ तिनके सद बलियारे जाओ राओ शरणागत प्रतिपाल कर स्वामी जो तुमक देहो सोई हूँ पाऊ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बाणी गावे सुनिया तिनकार ताए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर माने बोलो भाई हर कीर्त हर पव जल तीर्थ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनो जानी राम आपे गुरचेला है आपे आपे हर प्रभ चोज बडाणी जन नानक आप मलाए सोई हर मिरसी अवर सब त्याग हो हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता जाके बस कहे काम ते नाम सो ऐसा हर ते आइये मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सत नाम सदा सत नाम हलत पलत मुख उज्जल हुई है नित्य आइये हर पुरख निरंजना राव जय हर सिमरन पिया तह पाद गत कीनी बड़ पागी हर जपना जा नानक को गुरे मत दीनी जप हर पव जल तरना श्री महला चौथा मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए अमरी बेदन तू जानता साहा अबर क्या जाने कोए राम साचा साहेब सच तू मेरे साहा तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आखिए साहा अबर क्या जाने कोए राम साचा साहेब सच तू मेरे साहा तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आखिए साहा दूजा नाही कोए सबना बिच तू वरतदा साहा सब तुझे त्यावे दिन रात सब तुझे ही तावो मंग दे मेरे साहा तू सबना करे एक दाता सबके तुझ ही बिच है मेरे साहा तुझे बार कोई ना है सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साहा सब तुझ ही माहे समाहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे त्यावे मेरे साहा ज्यों पावे त्यों राख तू मेरे प्यारे सच नानक पत सा तनासरी महला पंजवां घर पहला चौप दे इक ओंकार सतगुर प्रसाद पवखंडन दुख पंजन स्वामी भगत बचलन अंकारे कोट पराध मिटे किन पीतर जां गुरमुख नाम समारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा बस कीने पंच दतारे राम तेरा थान सुहावा रूप सवावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लियो अबारे तेर वरना जापे रूप न लिखिए तेरे कुदरत कौन बिचारे जल थल मैयर रवि सर्वठाए अगम रूप गिर तारे कीर्त करहे सगल जन तेरी तू विनासी पुरख मरारे ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन द्वारे तनासरी महला पंजवां बिन जल प्रहंत जे है मीना जिन जल सिंह हेत बढ़ायो कमल हेत बिन सिंह वह पवरा उन मार्ग निकस न पायो अब मन एक सिंह मोकीना मरे न जावे सद ही संगे सतगुर सबदी चीना राव काम हित गुंचर लै पाक्यो उपर बस पियो बिचारा नाद हित सिर डारियो करंका उस ही हित बिदारा देख कटंब लुभ मोए प्राणी माया को लिपटाना अतर ज्यो अर लीनो अपना उन छोट सरा पर जाना बिन गोविंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दहेला कौ नानक गुरे हे बजायो प्रीत प्रभु सद केला तनासरी महला पंजवां कर कृपा दियो मोहिनामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो धंधा गुर की चरनी लाए साध संग चिंत बिरानी छाडी ओंबिद मोह मन बासना दे कर गढ़ है गाडी रहा ना को मेरा दुश्मन रिया ना हम किसके बिराए ब्रह्म पसार पसारियो पीतर सतगुर ते सोजी पाए सब को मीत है पे आपन कीना हम सबन के साजन दूर पर आयो मन का बिरहाता मेल लिखियो मेरे राजन बिनसो टीठा अमृत बूठा शब्द गुरु लगो गुर मीठा जल थल मैयर सरविन वासे नानक रमैया टीठा तना श्री मारला पंजवां जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिन से ओ आए महानंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो पियो प्रगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो राम गुण दान रिद पीतर बसिया ता दुख परम पागा पै प्रापत बस गोचर राम नाम रंग लागा चेत चिंता सोच सोचा सोग लोभ मोताका होमे रोग मिटे कृपा ते जमते पहे विवाका गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी को नानक जन जमते काडे तिस गुर के कुरबानी तनासरी महला पंजवा जिसका तन मन तन सब तिसका सोई सुगड़ सजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तो विद नेकी कटानी जी की एके ही पैमानी अबर जतन कर रहे बहुत तेरे तिल तिन कीमत जानी रा अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुर दीनो मन तानी डिगे न ढोले दिड़कारे ओ पूर्ण होए तृप्तानी ओ जो बीच हम तुम कुछ होते तिनकी बात बिलानी अलंकार मिल थैली हो ताते कनक बखानी प्रगटे जोत सहज सुख सोभा बाजे अनहत बानी को नानक निश्चल कर बांधियो गुर की ओ बनदानी तनासरी महला पंजवा बड़े बड़े राजन अर भूमन तांकी तिस न बूझे लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझे बिखया में किन ही तृप्त न पाई ज्यों पाप कीर्तन नहीं त्रापे बिन हर कहाँ काई राम दिन दिन करत भोजन ब बिंजन ताकि मिटे न भूखा उदम करे स्वान की न्याई चारे कुंटा कोका काम बंत कामी ब नारी पर ग्रह जो न चुके दिन प्रति करे करे पछतापे सोख लोभ में सुके हर हर नाम पारे मोला अमृत एक निदाना सुख सहजनंद संतन के नानक गुरते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन को है कछुए जा को फिरे तावे जा को गुरतीनो हे अमृत तिस ही को बन आवे जा को आयो एक रसा खान पान अन नहीं कुत्या ताके चिंतना चेतना बसारा मौर्य मन तन हरे होयो हरिया एक बूंद जिन पाए बर न साकू ताके कीमत कह न जाय काल न मिलियो सेव न मिलियो मिलियो आए चिंता जा को दया करी मेरे ठाकर तिन गुरे कमानो मानता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया परित पाला ओत पोत नानक संग रविया जि माता बालक पाला तनासरी महला पंजवा बार जाऊं गुरे अपने उपर जिन हर नाम दड़ाया महाध्यान अंधकार में जिन सिद्धा मार्ग दिखाया हमरे प्राण गपाल गोविंद इहा हुआ सर्व थोक के जिसे मारी चिंद राम जाके सिमरन सर्व निदाना मान महत पत पूरे नाम लहत कोटे अगनासे भगत वाचे सब तूरे सर्व मनोरथ जे को जाए से वे निदाना पार ब्रह्म परम पर स्वामी सिमरत पार पराना शीतल शांत महा सुख पाया सत संगरे ओ ला हर तन संचो हर नाम पूजन एह नानक कीनो चोला तनासरी महला पंजवा जे करनी हो भे शर्मिंदा ए अकमानी रीत संत की निंदा सकत की पूजा ऐसी दृढ़ विपरीता माया मोह भूलो अबरे हीता हर चंदौरी बन हर पात्रे एह तुहारो बीता राम चंदन लेप होत देखो सुख दर्द भस्म पल संगीत अमृत संग नाही रुचि आवत बिखे ठगौरी प्रीता उत्तम संत पदे संजोगी जग में पवित पनीत जात कार्त जन्म पदार्थ काच बादरे जीता जन्म जन्म के किल विख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेतर दीत सा संग इन दुख ते निकस्यो नानक एक प्रीत तनासरी महला पंजवा पानी पक्का पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सा सास मन नाम समारे इबसराम ने दपाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकर सदा सदा तो त्याई राम तुमरी कृपा ते मोह मन छूटे बिन सजाए परमाई अन ध्रुव परे वे सब मध्य जत कत भी को जाए तुम दयाल कृपाल कृपा निध पत पवन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए सुमुख ते निमख बलाए जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ के मन पाई नाम जप तृष्णा सब बुझी है नानक तृप्त काई इतना श्री
1: जागे स्नान ताप थान खंडे क्या इहो जंत बिचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याद तब हुटो रहाओ नह सुनिए नह मुक्ते बकिए नह मोहे ओहो डीठी ऐसी ठगौरी पाए पलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता हुन कर कर मिलियो दुआ किसी बाद काट किसी पैसगले लार लार मुआ हां बलिहारी सतगुर अपने जिन एहो चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत न व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया काटे तना श्री महला पंजवा तुम दाते ठाकर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे जेहवा एक कवन गोइन कही है बेशमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लही है रहाओ कोट प्राद हमारे खंडो अनक विधि समझावो हो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो हो तुमरी संत मारी आसा तुम ही सजन सहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले तना श्री महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इसनाना पुन दान बहु दैन कहो ना पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जपत मन चैन बह प्रकार खोजे सब ताको विखम न जाई लैन रहाओ जाप ताप परमण वसुदा कर उर्द ताप लै गैन एह बेदन है पत्यानो ठाकर जोग जुत कर जैन अमृत नाम नरमूलक हर जस तिन पायो जिस कर पैन साध संग रंग प्रपेटे नानक सुख जन रैन तना श्री महला पंजवा बंधन ते छटकावे प्रभु मलावे हर हर नाम सनावे अस्तर करे न चले मनुआ बोहरना कतहूं तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समगरी जियो ही ओ देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ पार तन पार तन पर की निंदा इनसो प्रीत ना लागे संत है संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागे गुण दान दयाल पुरख प्रभ सर्व सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जियो माता बाल गपाला तना श्री महला पंजवा हर हर लीने संत अवार हर के दास की चितवे बरियाई तिसी को फिर मार रहाओ जन का आप सहाई हुआ निंदक पाके हार प्रमत प्रमत उहा ही मुए बहुड़ ग्रहना मंजार नानक सरण परियो दुख पंजन गुण गावे सदा अपार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया कै दरबार तना श्री महला पंजवा अभार राखन हार चितारिया पत तपनीत किए खिन पीतर सगला रोग बदारिया रहाओ गोष्ट पे साध के संग काम क्रोध लो मारिया सिमर सिमर पूरन नारायण संगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एके मन विश्वास प्रभ तारिया चन रेन बाछे नित नानक पुने पुने बलिहारिया तना श्री महला पंजवा मेरा लागो राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सहाय जिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राख्यो अपना कर विरथा सगल मटाई निंदक के मुख काले कीने जन का आप सहाय साचा साहिब हुआ रखवाला, राख लिए कंठ लाए निरपा पे सदा सुख माने, नानक हर गुण गाए तना श्री महला पंजवा। औखद तेरो नाम दयाल, मोहे आतर तेरी गत नहीं जानी, तू आप करे प्रपाल रहाओ, तार अनुग्रह स्वामी मेरे दुतिया पाओ नवार, बंधन काट लिहो अपने कर कबू ना आवे हार, तेरी शरण पया हो जीवा तू समरथ पुरख मेहरवान, आठ पैर प्रभ को आराधी नानक सद करवान, राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हाँ हाँ प्रभ राख लियो हम ते किछु ना होए, मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम दे हो रहाओ, अगन कटंब सागर संसार परमो अज्ञान अंधार, ऊच नीच सुख दुख तरापस नाही तृष्णा पूख, मन वासना रच विखे व्याद पंच दूत संग महा असाद, जी जहान प्राण तन तेरा नानक जान, सदा हर नीरा तनासरी महला पंजवा। दीन दर्द नवार, ठाकर राखे जन की आप, तन तारन हर निद दुख न सके व्याप, साधु संग भजो गोपाल ना आन संजम, किश ना सूजे जतन काट काल काल रहाओ, आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोए, जन मरन वार हर जप सिमर स्वामी सोए, वेद सिमरत कथे सास्त भगत करे विचार, मुक्त पाइए साध संगत बिन सजाए अंधार, चरण कमल आधार जन करास पूंजी एक, तान मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक, तनासरी महला पंजवा। फिरत फिरत पेटे जान साधु पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे हर हर नाम ते आया, ताते मोहे तारी ओट गोपाल, सन परयो पूरन परमेसर विनसे सगल जंजाल, रहाओ सुरग मृत प्याल भूमंडल सगल व्यापे माए, जी अधारण सब कुल तारण हर हर नाम ते आए, नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्व नदाना, कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना, तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौप दे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, छोड़ जाहे से करे पराल, काम न आवे है से जंजाल संग न चाल है, तिन स्यों हीत जो वैराई से मीत, जो वैराई से मीत, ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ खोए गवारा, रहाओ सच धर्म नहीं पावे डीठा, झूठ तो हो स्यों रचियो मीठा, दात प्यारी बिसरिया दातारा जाने नाही मरण, विचारा वस्त पराई को उठ रोवै, कर्म धर्म सगला ई खोवै, हुक्म न बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछो ताने, जो तत पावे सो परवान तेरे पाने नो करवान, नानक गरीब बंदा जन तेरा राख ले साहिब प्रभ मेरा, तना श्री महला पंजवा, मोहे मस्कीन पव नाम आधार, खाटन को हर हर रोजगार, संचन को हर एको नाम, हालत पालत ताके आवे काम, नाम रते प्रभ रंग पार, साध गावे गुण एक निरंकार, रहाओ साध की शोभा आत्मस्कीने, संत बढ़ाई हर रस चीने, आनंद संतन के भक्त गोविंद, सुख संतन के विनसी चिंद, जह साध संतन होवे अकत्तर, तैं हर जस गावे नाद कवित, साध सभा में आनंद विश्राम, उन संग सो पाए जिस मस्त कराम, दोए कर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहां गुणतास, प्रव दयाल किरपाल हजूर, नानक जीवे संता तूर, श्री महला पंजवा। सो कत डरे जे खसम समारे, डर डर पचे मन मुख विचारे, ਰਾਹੁ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਜਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਂ ਕੀ ਰਾਸ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੀਅਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰਨ ਸਭ ਟਾਏ ਕੋਟ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇ ਹਰ ਨਾਏ ਜਨ ਮਨ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਨਾਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਵਾਸੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੇ ਤਿਸੇ ਹੀ ਜਾਏ ਸਹੀ ਭਗਤ ਜੇ ਸਾਚੇ ਪਾਣੇ ਜਮ ਕਾਲ ਤੇ ਪੈ ਨਕਾਣੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦਰਬਾਰ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਗਲ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਰ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਰ ਬਾਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾਤਾਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਸਵਾਮੀ ਸਾਸ ਮਸਲਤ ਪਰਵਾਨ ਰਹਾਓ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਧਨ ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਸਾਖੀ ਚੰਨ ਸਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਹਰ ਸੰਤੀ ਇਹ ਵਿਦ ਜਾਤੀ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪਾਏ ਕੰਠ ਲਾਏ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮੇਂ ਜਲਨ ਨਾ ਦੀਨੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਦੁੱਤਰ ਪਾਖੇ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਵਿਸਵਾਸ ਪੇਖ ਪੇਖ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਉਲਾਸ ਰਹਾਓ ਚਰਨ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਾਖਿਓ ਜਾਣ ਬੂਝ ਆਪਣਾ ਕਿਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕਾ ਅੰਕੁਰ ਰਾਖਿਓ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮੇ ਮਨ ਸਦਾ ਤਿਆਈ ਈਦ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੇ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਣੀਏ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਕ ਮੈਂ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬਣੀਏ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ ਅਪਿਆਓ ਦੇ ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਧ ਪਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਸ਼ੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਕਾ ਰੂਪ ਜਪ ਜਪ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਜਾਣ ਆਚਾਰਜ ਅਨੂਪ ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਣ ਪਗ ਸਾਧਾ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਕਰ ਆਓ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਨੈਚਰ ਰਾਜ ਕਮਾਓ ਤੁਮ ਕਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਖੀ ਹਰ ਆਪ ਨਵਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪਈ ਬਤੀਤ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ ਕਰ ਮੰਗਲ ਬਾਜੇ ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨਵਾਜੇ ਅਸਥਿਰ ਰਹੋ ਡੋਲੋ ਮਤ ਕਬਹੂੰ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਆਧਾਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਡਲ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ ਜਿਨਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਹੀ ਫੇਰੇ ਆਪੇ ਪਿਆ ਸਹਾਈ ਅਚਰਜ ਕੀਆ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨੋ ਹਮਾਰੇ ਜੀਓ ਹਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੀਓ ਰਹਾਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਵਰ ਕਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹਰ ਅਵਰ ਜੰਜਾਲ ਤੇਰੇ ਕਾਹੂ ਨਾ ਕਾਮ ਜੀਓ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇਵਾ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਸਿਉ ਨਾ ਲਾਈਏ ਹੀਤ ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਬੀਤ ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ ਮਨ ਤਨ ਤੂੰ ਆਰਾਧ ਹਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਧ ਜਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਛੂਟੈ ਗਹੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਚਰਨ ਅਵਰ ਆਸ ਕਾਸ਼ ਪਟਲ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸੋਈ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਤਪਾ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਪਲੋ ਰੇ ਪਲੋ ਰੇ ਪਲੋ ਹਰ ਮੰਗਣਾ ਦੇਖੋ ਪਸਾਰ ਨੈਣ ਸੁਣੋ ਸਾਧੂ ਕੇ ਬੈਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਚਿਤ ਰਾਖ ਸਗਲ ਹੈ ਮਰਨਾ ਰਹਾਓ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਰਸ ਭੋਗ ਕਰਤ ਅਨੇਕੇ ਵਿਖਿਆ ਬਕਾਰ ਦੇਖ ਸਗਲ ਹੈ ਫੀਕੇ ਏਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮ ਨੀਕੋ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸਾਧ ਜਨ ਤਨ ਤਨ ਆਪਣ ਥਾਪਿਓ ਹਰ ਜਪ ਨਾ ਨਿਮਖ ਜਾਪਿਓ अर्थ द्रव देख कछ संग नाही चलना जा कोरे कर्म पला तिन ओट गही संत पला तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभिमान एके निरंकार नानक मन लगना तना श्री महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे कल कलेश लोभ मोह महा पौ जल तारे रहाओ सास सास निमक निमक दिन सरैन चितारे साध संग जापन संग मन निदान तारे चरण कमल नाम सकार गुण गोविंद विचारे साजना की रेन नानक मंगल सुख सदारे तना श्री महला पंजवा कर अठवा दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास समाले ए लोक परलोक संग सहाई जात कात मोहे रखवाले गुर का बचन बसे जी नाले जाल नहीं डूबे तस कर नहीं देवै पाहे ना साके जाले रहाओ निर्धन को तन अंधले को टेक मात दूध जैसे बाले सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तना श्री महला पंजवा पे कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय संचाई नाभनित रेद सिद हर लाग रही जन पाई संतन को आनंद सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकर भगतन का रब रिहा सर्व ठाई रहाओ ताको कोई न पहुंचन हारा जाके अंग गुसाई जम की त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम त्याई इतना श्री महला पंजमा दर्भवंत दर्भ देख गर्वे पूमवंत अभिमानी राजा जाने सगल राज हमरा त्यों हर जन टेक स्वामी जे कोई अपनी ओट समारे ऐसा वित तैसा होए वरते अपना बल निहारे रहाओ आन त्याग पै एक आसर सरण सरण कर आए संत अनुग्रह पै मन निर्मल नानक हर गुण गाए तना श्री महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में है सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस्ता कह जा का सतगुर पूरा ठाकर गाये आत्म रंग सरनी पावन नाम त्यावन सह समावन संग रहाओ जन के चन बसे मेरे हीरे संग पनीता देही जन की तूर देहो कृपा निध नानक के सुख एही तना श्री महला पंजवा जतन करे मानुख डहकावै ओहो अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे पेख करे नरवाने जानत दूर तमे प्रभ नेर उत ताके उत ते उत पेख आवे लोभी फेर रहाओ जब लग टूटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कौ नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तना श्री महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जाके मस्त कर्मा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम बढ़ाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा साहा नाम बिहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तना श्री महला पंजवा नेत्र पनीत पे दर्श पेखे माथे परो रवाल रास रास गुण गावो ठाकर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखन हार दयाल सुंदर सुगढ़ ब्यांत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ महानंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बाध्यो पाल तना श्री महला पंजवा अपने उक्त खलावे भोजन अपने उक्त खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल ज्यो राखे मैं तारी बारक को तैसे ही प्रभ पाल ਰਾਹ ਉਮੀਦ ਸਾਜਨ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਦੇਵਾ ਈ ਤੂਤ ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖਜਾਰੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਤਨ ਜੀਰਾ ਇਨ ਉਪਰ ਲੈ ਬਾਰੇ ਮਨ ਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਤਕਾਰੇ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸਹਿਤ ਭਵਨਿਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਰਹਾਓ ਧਨ ਸੋ ਥਾਨ ਧਨ ਉਹ ਭਵਨਾ ਜਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਵਿਸਾਰੇ ਵਿਸਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰੋ ਠਾਕਰ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰੇ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੜਾਏ ਲਿਓ ਮਹਾਂਬਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤ ਏਕ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਮੰਤਾ ਵਿਨਸ ਨਾ ਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਪਈ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤ ਰਹਾਉ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਖੀ ਪਾਤ ਨਾਨਕ ਚੰਨ ਗਹੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਰ ਹਰ ਨਾ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦ ਇਵ ਹੀ ਕਰਤ ਗਦਾਰੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਸ ਮਿਥਿਆ ਮਿੱਠੀ ਇਹ ਟੇਕ ਮਨੇ ਸਾਧਾਰੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਵਰਦਾ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾਰੀ ਜੈਸੇ ਕਾਗਦ ਕੇ ਪਾਰ ਮੂਸਾ ਟੂਕ ਗਵਾਵਤ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਰੀ ਰਹਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਇਹ ਬੰਧਨ ਛੁਟਕਾਰੀ ਬੂਟਤ ਅੰਧ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਾਢਤ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸਿੰਘਾਰੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੀਤਲ ਤਨ ਮਨ ਸਾਤੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੂਖ ਤਨ ਜੀ ਕਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਰੇ ਜਾਤੀ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਾਤੀ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਧ ਥਾਤੀ ਰਹਾਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪਾਤੀ ਮੇਲ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਖੀ ਪਾਤੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਵ ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮ ਮਾਰਾ ਨਿਰਖੋ ਤੁਮਰੀ ਔਰ ਹਰ ਨੀਤ ਮਰਾਰ ਸਹਾਏ ਹੋ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰ ਗਹਿ ਉਦਰੋ ਮੀਤ ਰਹਾਓ ਸੁਣੀ ਬੇਨਤੀ ਠਾਕਰ ਮੇਰੇ ਖਸਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਆਪ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਪਏ ਦੁਖ ਭਾਗੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਤਾਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਧਾਰਿਓ ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ ਰਹਾਓ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਈਆਂ ਉਆਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਔਖੀ ਕੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਿਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਆਦਿ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਓ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਕੋ ਵਿਸਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨੋ ਅਭਾਗਾ ਚੰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਰਾਗਿਓ ਅਮਿਓ ਸਰੋਵਰ ਭਾਗਾ ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਾਗਾ ਆਲਸ ਚੀਜ ਗਇਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰਹਾਓ ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ ਤੈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਗਲ ਕਟਾ ਮਹਿਤਾਗਾ ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਆਗੇ ਸਭ ਅਨਰਾਗਾ

सिमर सिमर स्वामी प्रभा पनानिक तन आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम जन कमल हर जन की ताती कोट सुख विश्राम गोविंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत करवान तना श्री महला पंजवा मांगो राम ते इक दान सगल मनोरथ पूरन होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चन तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सोग अगन में मन ना व्यापे आठ पैर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बोहन जन्म ना छापन तना श्री महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानु को जाचत श्रम पाइये प्रभु के

राम जप जगदीश जप मन महा हर हर जगन्नाथ जगलाहा तन तन बड़े ठाकुर प्रभ मेरे जप नानक भगत महाराम जय श्री मल्ला चौथा आपे जोगी जुगत जगाहा।

तकड़ाए जप नाम रतन अमाहा राम सखी मिलो मिन गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हंतन हर हर भगत रड़ी मन पाई हर हर नाम अमाहा राम आपे बड़ दाना बड़ चाहा गुरमुख पूंजी नाम बिसाहा हर हर दात करो प्रभावे गुण नानक नाम अमाहा राम जैत श्री महला चौथा मिल सत संगत संगुराहा पूंजी नाम गुरमुख बेसाहा हर हर कृपा धार मधुसूदन मिल सत संग अमाहा राम हर हर बाणी श्रवण सुनाहा कर कृपा।

गुरप्रसाद नानक मन बसिया दुख न कबहू झूरो बुझ प्रभ को जे श्री महला पंजमा लोड़िंदड़ा साजन मेरा घर घर मंगल गावो नीके घट घट तिसे बसेरा रहाओ सुख राधन दुख राधन बिसरे न काहू बेरा नाम जपत कोट सूर उजारा बिनसे भरम अंधेरा थान थनंतर सब नी जाई जो दिसे सो तेरा

0: रबिया सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझ सी निर्मल जन सोई। श्लोक रचांत जी रचना मात गर्भ स्थापन, सा सा सिमरंत नानक महा अगन विनाशनं। मुख तले पैर उपरे वसंदो को हथड़े थाए, नानक सो तनी क्यों बिसारियो उदरे जिस ते नाए। पौड़ी
1: करनि मिया अगन उदर मजार, उर्द मुख को चील बिकल नरक कोर गवार। हर सिमरत है तू ना जल है जल ही, मंतन उर तार बिखम थनाओ जिन रखिया। तिस तिल नहीं तिस तिल ना वसार, प्रभ सिमरत सुख कदे नाए जासे जन्म हार। श्लोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूने, अखंडन कल क्लेश प्रभ सिमर नानक ने दूर नह। हम रंग माने जिस संग तै ज्यो स्यों लाइये न्यो, सो सो बिंदन विसरो नानक जिन सुंदर रचियो देओ दे। जिन सुंदर रचिया दे पौड़ी, ज्यो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग। ग्रह मंदर रस अस दिए रच ले रच पले संजोग, सुत बिन्ता साजन सेवक दिए प्रभ दिया दीने रस भोग। ग्रह मंदर रथ अस दिए रच पले संजोग, सुत बिन्ता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग। हर सिमरत तन मन हरिया ले जाए बिजोग, साध संग हर गुण रम है बिनसे सब रोग। श्लोक कुटुंब जतन करन माया अनेक उधम है, हर भगत पावहीनक नानक प्रभ विसरत प्रीत है। तुत्तड़िया सा प्रीत जो लाई बियन स्यों, नानक सच्ची रीत साई से तीरतिया। पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए कहते सब प्रेत, खिन ग्रह में बसन देवी जिन स्यों सोई हेत। कार अनरथ दर्व संचिया जो सो कार्य केत, जैसा बीचे सोलने कर्मा ए हो खेत। अकीर्त कणा हर विसरिया जोनी परमेत। श्लोक कोट दानिश नानक अनक सोदन पवित्र, उचरंत नानक हर रसना सर्व पाप मुचते। ईधन की तोम कणा पूरी दी तुम पाए, मन बसंदड़ो सच सौ नानक हब्बे दुखड़े ओलाए। पौड़ी कोट अगा सब नास होए सिमरत हर नाओ, मन चिंदे फल पाइये हर के गुण गाओ। जन्म मरण पे कटिये नैचल सच थाओ, पूरब होवे लिखिया हर चरण समाओ। कर कृपा प्रभ राख लियो नानक बल जाओ। श्लोक ग्रह रचना अपारंग मन बिलास सुवादंग रस है, कदाच न सिमरत नानक ते जंत बिष्टा क्रम है। मच अडंबर हब कुछ अब कह मंज मोहब्बत ने, सो साई जय विसरे नानक सो तन खे। पौड़ी सुंदर से जनिक सुख रस भोगन पूरे, ग्रह सोए चंदर सुगंध लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख मानदा कुछ ना बसूरे, सो प्रभ चितना भी विस्टा के कीरे। बिन हर नाम न शांत होए कित विद मन तीरे। श्लोक चरण कमल बिरंखो जित बैरागी दैद से, त्यागत कपट रूप माया नानक नंद रूप। साध संग में मन साई मुख उचरा वता हब्बे लो, नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची। सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात न पात न आद्रो ध्यान पर मिन्ना। मित्र न हिट तन रूपहीन कुछ साख न सिन्ना। राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना, तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभ हो सो प्रसन्ना। श्लोक अनिक लीला राज रस रूपंग शतर चमर तख्त आसनंग, रचंत मूढ़ ज्ञानंदे नानक सुपन मनोरथ माया। सुपने हब रंग माणिया मिठा लगड़ा मो, नानक नाम बिहूनिया सुंदर माया त्रो। पौड़ी सुपने से ती चित मूरख लाया, बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया। आर जा गई ब्याये तंदे ताया, पूरन पे न का ਨਾਮ ਹੋਏ ਆ ਮਾਇਆ ਕਿਆ ਬਚਾਰਾ ਜੰਤ ਜਾ ਭਲਾਇਆ ਸਲੋਗ ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕੈ ਜਿਤ ਤੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣੈ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਣੈ ਕੌਤਕ ਕੋੜ ਤਮਸਿਆ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਸ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਕੋਟੀ ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬੇ ਉੱਜੜ ਸੋਈ ਥਾਉ ਪੌੜੀ ਮਹਾਦਿਆ ਮਹਾਭਿਆਨ ਵਿਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨੀਆ ਝੂਠ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਕ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨੀਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਫਿਰੇ ਦਵਾਨੀਆ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਨੀਆ ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆ ਸਲੋਕ

प्रभ दृष्णंग लगड़ा सोनियो मन बहाजो रतिया विद्रोह सच थोक नानक मिठड़ा सोतनी विद्रोह सच थोक नानक मिठड़ा सोतनी पौड़ी हर बिन कुछ न लागी भगतन को मीठा आन स्वाद सब फिक किया कर निरपौड़ी था ज्ञान परम तुक कटिया गुर पे बसीठा चरण कमल मन बेदिया जो रंग मजीठा जो प्राण तन तन प्रभु से सब झूठा श्लोक त्यक्त जलंग ने जीव महीनंग ने त्याग चात्रिक मेघ मंडल बाण बेदंच कुरंक नादंग अलबंदन कुसुम वासने चरण कमरी चंद संत नानक आन न रुचते मुख डे खाऊ पलक षड आन देव जित चित जीवन संगम तिसनी हर नानक संता मित पौड़ी जो मछली बिन पानिए क्यों जीवन पावे बूंद बिहुना चात्र को चात को क्यों कर त्रिपतावे नाद कुरंकुर कह बेदिया सन्मुख उठतावे पवर पवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बदावे त्यो संत जना हर प्रीत है देख दर्श गावे श्लोक चितवत चरण कमलंग सास सास आराधने नै विसरंत नाम चत नानक आस पूरन परमेश्वर है सीतरा मन महाज पलक न थी वे बहरा नानक आसरी निभा सदा पखेंद्रो सच तनी पौड़ी आसा बंती आस गोसाई पूरिये मिल गोपाल गोविंद ना कबू चूरिये दे दर्श मन चाओ ले जाए बसूरिये होए पवित्र श्री रचना तूरिये पार ब्रह्म गर देव सदा हजूरिये श्लोक रसना उचरंत नामंग सर्वनंग सुनत शब्द अमृत है नानक तिन सद बिलहारंग जिना त्यान पार ब्रह्म है हब कुड़ावे कम इकसाई बारे नानक सही तना जिन पिरहड़ी सच स्यो पौड़ी सद बिलहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रदान भवे प्रमथा हर जस लिखे बेअंत सोयत से हथा चरण पनीत पवित्र चाले प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा श्लोक पावी तो कर नंग हर रमनंग संजोग पूने गोपाल दस पेटंग सफल नानक सो मुहूर्ते की मन सका पाए सुखमती हो बारे नानक सावे लड़ी परवान जिस मलंदड़ो मापरी पौड़ी सावे ला को कौन है जित प्रभ को पाई सो मूरत पला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पैर हर त्याय कई मन इच पजाई बड़े पाग सत्संग होए नव नव लागा पाई मन दर्शन की प्यास से नानक बल जाई श्लोक पतित पुनीत गोविंद सर्व दुख निवारने सरन सूर भगवाने जपंत नानक हर हर हरे छड़ियो हब आप लगड़ो से चरना पास नठरो दुख पाप नानक प्रपे खिंदिया पौड़ी मेले दयाल टैपे दवारिया रख ले वो दीन दयाल परमत बोहारिया भगत वशल तेरा विरद हर पतित उधारिया तुझ बिन नाही को बिनो मोसारिया कर गैले दयाल सागर संसारिया श्लोक संत उधरन दयालंग आश्रंग गोपाल कीतने निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरदरूत मूल न मिट्टी काम शीतल थी वे नानकाज पंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपौ वै मन तोट न आवे मूल संचया नाम तन संत जनास्यो संग पाइये वड्डे पुन आठ पैर हर त्याय हर जस नित सुन श्लोक दया करनंग दुख हरनंग उचरंग नाम कीर्तने दयाल पुरख भगवाने नानक लिप्त न माया पाए बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रवाप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जा पौड़ी जा प्रभ पे दयाल न व्यापे माया कोट अगा गए ना सारी कत्याया निर्पल पे निर्मल पे शरीर जन तूरी नाया मंतन पे संतोख पूरन प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोक कुल सबाया श्लोक गुरु गोविंद गोपाल गुरु गुरु पूरन नारायणे गुरु दयाल समरथ गुरु गुरु नानक पतित उदारने पौजल बिखम असगा गुर बहते तारियम नानक पूर क्रम सतगुर चरनी लग्या पौड़ी तन तन गुर देव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जपे ता आप गुण सब शपे पार ब्रह्म गुर देव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाये बेअंत रसना हर जसे श्लोक दृष्टंत एको सुनियत एको वर्त एको नरहर नाम दान जा चिंत

मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगुण सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत रिष्ट तारो ब्रह्मान आठ पैर रसना गुण गावे जसपुर गावे समर्थ कान तेरी शरण जी के दाते सदा सदा नान करवान टोडी महला पंजवा प्रभ तेरे पक्की तूर दीन दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पुरहाओ दै दिसरव रिया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते ते से जन कबू न मरते चूर बंद तंद बंद बिन से माया के साधु संग मिटे बसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्यास इखिन रह न सको बिन प्रीतम दर्शन देखन को तारी मन आसराव सिमरो नाम निरंजन करते मन तनते मन तनते सब किल वेख नास पूरन पार ब्रह्म सुख दाते बनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास शांत सह सुख मन उपजियो कोट रूस ना सूर नानक परगास टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन राव सुंदर सुगर चतर सब बेता रिददास निवास भक्त गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम पू बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पै बिस्मादा आन बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जसीवा नानक दास सदा अम्बल जावन टोडी महला पंजमा माई माया शल त्रिनकी अगन मेघ गी छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ छोड़ सियान बहुत चिता चितराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानक देखा उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पाग हीन समझत नहीं खल प्रेम भक्त राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल टोडी महला पंजमा माई चरण गुर मीठे बड़े पाग देवे परमेसर कोट फला दर्शन गुर डीठे रहाओ गुण गावत चत बनासी काम क्रोध बिनसेस मद डीठे अस्थिर पै साच रंग राते जन्म मरण बह नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पाया जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहजनंद होवे दिन राती अंकर पलो हमारा रहाओ गुरपुरा पेट्यो बड़पागी जाको अंत न पारा वारा कर गए काढ़ लियो जन अपना बिकसागर संसारा जनन मरन काटे गुरबचनी बहुन संकट द्वारा नानक शरण गई स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख पुगवे हर सिमरत बिन से सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल विख नासे सिमरत पावन तन मन सुख देख स्रू पूरन पैया सा दर्शन पेट उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जत हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्व ना दुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उर तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत विचारे गुण गावत तल सुख पाया ठाकर अगम पारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहर कृष्णा विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला पंजमार ओंकार सतगुर प्रसा काहू कहा अपनी अधमाई उर्जो कनक कामनी के रसने कीरत प्रभ गाई रहाओ जग झूठे को साथ जान के तास्यो रुच उप जाई दीन बंद सिमरियो नहीं कबहू होत जो संग सहाई मगन रियो माया मैं निस दिन छुटी न मन की काई कै नानक अब नह अंत गत बिन हर की शरणाई टोडी बाणी भगतां की इक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वाह कोई बोले दूर जल की मछली चरे खजूर काया रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिने छपायो रहा पंडित होके वेद बखाने मूरख नाम दे रमियो जाने कौन को कलंक रियो नाम नाम ले थी पवित्र पतित पवित पै राम कहतरी रहाओ राम संग नाम दे जन को परत गयाई एक दसी वर्त रहे काहे को तीरथ जाई पंथ नाम दे
समत पै गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए तीन छंदे खेल आचे रहाओ। कवार के कर कवार के कर हांडी आचे राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आचे रांडी सांडी हांडी।

शब्द तुन अन हद बाजे, अन हद बाजे हम कर साजन आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो ता प्रभ पाव हो। सुरड़ा जुग चारे अपने कर आया, थान सवाया कार्य शब्द सवारे। ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिपण रूप दिखाया, सखी मिलो रस मंगल गावो हर का हम कर साजन आया। मंतन अंतर मंतन अमृत पीना अंतर प्रेम वरता, अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारो। जंत पीक तू सफल दाता सिर सिर रब दे वण हारो। तू जान ज्ञानी तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना। सुनो सकी मन मोन मोया, तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा सचा खेल तुम्हारा, सच खेल समारा सच खेल तुम्हारा। अगम अपारा तुझ बिन कौन बजाए, सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए। काल बकाल पै दवाने मन राख्या गुर उठाए, नानक अवगुण शब्द जलाए गुण सागम प्रापाए। राग सुई महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आवो जाओ आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। कर अपने खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन पुरा मेरा मैं तेरा परवासा। दर्शन देख पई न केवल जर मन दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए पसवाए। नानक सजन को बल जाइए सच मिले कर आए। कर आए आई अड़े साजना ता तानत खरी सर सी राम। हर मोह हड़ी सा शब्द ठाकर देख सरा हंसी राम। गुण शंकर हसी खरी सर सी जा रावी रंग राते। अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख बताते। तस्कर मार बसी पहचान अदर करे बेचारे। नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे। बर पालिया बालड़िए आसा मनस पूरी राम। फिर रावी अड़ी शब्द रलिए रब रिहा ना दूरी राम। रब दूर न होए कट कट सोई तिसकी का तिसकी नार सवाई। आपे रसिया आपे रब तिस ज्यो तिस दी बड़े आए। अमर डोल अमोल अपारा गुर पूरे सच पाइए। नानक आपे जोग संजोगी नजर करे लिबलाइए। फिर उचड़िए माड़िए त्यों लोक ने सिर ताजा राम। हो बिसम पे दे गुण अनहद शब्द गाजा राम। शब्द बचारी करने सारी राम नाम ने सण। नाम ना खोटे ने ठार नाम रतन परवान। पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जासी। नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अबनासी। एक ओंकार सतग प्रसाद राग सुई महला पहला कर चौथा। जिन क्या तन देखिया जग तंदड़े लाया। दान तेरे कट चानना तन चंद दे पाया। चंद पाया दान हर के दुखा नीरा उठ गया। गुण जंज लाले नाल सोए परख मोणिया लिया। वाह हुआ सोब सिद्धि पंज शब्दी आया। जिन क्या तन देखिया जग तंदड़े लाया। हो बले हरी साजना मीता अपरीता। इहो तन इहो तन जिन स्यों गाढ़िया मल लियड़िया दिता। लिया तदिया मान जिन स्यों से सज्जन क्यों बिसरे। जिंद से आया हुए रड़िया जी सेती गह रहे। सगल गुण अवगुण न कोई हुए नीता नीता। हो बलिहारी साजना मीता प्रीता। गुणा को होवे बासला कट बास लही जय जय गुण। होमन साजन साजना मिल साज करीजे। साज करीजे गुणा केरी छोड़ अवगुण चलिए। पैरे पटंबर कार अडंबर अपना पेड़ मलि मलिए। जिथे जाए बहिए भला कहिए चोर अमृत पीजे। गुणा को होवे बासला कट बास लहीजे। आप करे किस आखिए होर करे ना कोई। आखण ता को जाइए जे भुलड़ा होई। जे होए भूला जाए कहिए आप करता क्यों भुले। सुने देखे बाज कहिए दान अणमंगया देवे। दान दे दाता जग बताता नानक सच सोई। आप करे किस आखिए होर करे ना कोई। राग सोई महला पहला मेरा मन रता गुण रवे मन पावे सोई। गुर की पौड़ी सच की साचा सुख होई। सुख सह जावे साच पावे सच की मत क्यों अटले। इस नान दान सो ज्ञान मंजन आप अछलियो क्यों छले। प्रपंच मोह बकार था।

0: लाल अंत गुलाला शब्द चिन्ह गुर मीठा मिथ्या मोह मगन ची रहा झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन कृपा निद राख लाज भगवंत भगताना सुन बाबरे सेव ठाकर नाथ पराना सुन बाबरे जो आया तिस जाना नहे चल हब वैसी सुन परदेसी सत संग मिल रहिए हर पाइये पागी सुन भरागी चरण प्रभ घर रहिए एहो मन जीजे संक न कीजे गुरमुख ताज बहुमाना नानक दीन भगत भव तारण तेरे क्या गुण आख बखाना सुन बाबरे क्या कीचे कूड़ा मानो सुन बाबरे हब वैसी गर्भ गमानो नहे चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभ होय होय दासा जीवन मरिए पब जल तरिए जे जे थीवे कर्म लग्या सा गुरु असे
1: गुरु सेवी जे उसकी जे सलावे सब त्यानो नानक सन पया द्वारे ओ बल बल सद कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ में पाया सुन बावरे थी ओ रे अंजनी प्रभ ते आया जिन प्राप्त आया तिन सुख पाया बटभागी दर्शन पाइया थियो नवाणा सतकरवाणा सगलाया मटाइया ओ धन भाग सुधा जिन प्रभ लदा हम तिस पाया बिचाया नानक दीन सन सुख सागर राख लाज अपनाया सुही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुर दिती तुसका बलराम जियो हरि अमृत भरे भंडार साहब किस है घर तिसका बलराम जियो बाबल मेरा बड समरथा कन कन प्रभारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आ जुगाद भगतन कारा खाउ कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा आंदन वंदन बीवा हरा पेले मलायक बिछोड़ा थी वी बलराम जियो जिसनों तेरी टेक सो सदा साजी वी बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिर जहारा जेते खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रहने आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सज बलहारी समलिया सा थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया सब देव सियाए गए कंठ लाए मिले अंतर जामिया सत संतोख बजे बाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बनासे सगल नानक प्रापुर कने हारे उपजिया तत गयान सोहरै पय एक हर बलराम जियो ब्रह्म ब्रह्म मिलिया कोई न साकै पिन कर बलराम जियो विष्णु पेख विष्णु सुनिए विस्मार नदरी आया जल तन मैयल पूर्ण स्वामी घटका रिया समाया जेती उपजिया तमाय समाया कीमत कह न जाए जिसके जल तन जाई लखने नानक दसे त्याय

तू ठाकरो बर अगरो मैं जही कांचेरी राम तू सागरो रतनागरो हो सार न जाना तेरी राम सार न जाना तू बड़दाना कर मेहरा मत साई कृपा की जे सामद दीजे आठ पैर तो तिहाई।

तुम बड़े बड़े बड़ूचे हो इतनी कलोरी आराम हो कृष्णा ही एको तू है आपे आप सुजाना अमृत दे हटने मुख प्राव जीवा सर्व रंग समाना चरण सारनी दास दासी मन मोहले तन हरिया नानक ठाकुर सर्व समाना आपन पावन करिया तू जो पर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सो तुम चतराई तेरी तू जाना ऐहे जाना राम सोई जाने सोई पछाने जाको नदर सरंदे मन मुख भूली बोती राही फाती माया बंदे ठाकर पानी सागुण वाती तेनी सब रंगा मन माणा नानकी तर तू है ठाकर तू नानका माणा को वारी वंजा कोली वंजा तू परम तमेरा उला राम हो बल जाई लख लख लख बरिया जन परम परदा खुला राम मिटेंदारे तजे विकारे ठाकर सुमन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सबल जन परवाना पई मोली भारा तोली मुक्त जोत दर खोला को नानक हो निरप होई सो प्रभ मेरा ओला सुही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता पाई सुत बंध जी प्राण मन भाणा राम जीव पिंड साहब तिसका दिया सर्वगुणा भरपूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रिहा भरपूरे काकी सन सर्व सुख पाए हुए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलहारे नानक साध कुरबाणा ऐसा गुरबुट भागी पाई है जित मिला प्रभ जापे राम जन जन्म के किल वेख उतरे हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइये प्रभु त्याइये बौड़ जो नाइये गुर जानी लागे भ्रम पा पागे मन चिंदिया फल पाइये हर गुण नित गाये नाम त्याए फिर सुग नाही संताप है नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस प्रताप है हर हरे हर गुण निधे हर संतन कह वासे आए राम संत चन गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम परम पद पाया मटाया हर पूर्ण कृपा थारी सफल जन्म हुआ पा भागा हर भेटिया एक मोरारी जिसका साथ नही मेल लिया ज्योति जो समाया नानक नाम रंजन जपिया मेरे सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी यश सवाई राम रंग रते अपने स्वामी से।

पौड़ी हर नाम सलाई सरकार कमावे दूजी कारे लग्या फिर जोनी पावे नाम रत्या नाम पाई नामे गुण गावे गुर के साथ सलाई हर नाम समावे सतगुर सेवा सफल है सेवै फल पावे। श्लोक महला दूजा किसी कोई कोय मंजन माड़ी एक तो क्यों न मरीजे रोए जा लग चेतना आवे ही महला दूजा जा सुख तो सोरा भी हो दुख भी संभाल्यो ए नानक सियाणीए कंत मिलावा हो ए पौड़ी हो क्या किरम जंत हो क्या सलाई किरम जंत बड़ी तेरी बडियाई तू अगम दया लगा मैं आपे लै मलाई मैं तो जबन बेली को नहीं तू सिखाई जो तेरी शरणागति तन लै छड़ाई नानक बेपरवाह है तिस तिल ना तुमाई राग सुही बाणी श्री कबीर जी तथा सवना भगतां के कबीर के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम ना कब लीना ना राम ना जपो कर मत लागे मर जावे को क्या करो भागे रहाओ दुख सुख करके एक टंब जवाया मरती बार एक सतगुरु पाया कंठ ज्ञान तब कर्ण पकारा कहे कबीरा गे तेना समारा सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो थर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या कर सी पियो रहन गई मर दिन पी जाए भबर गए पग बैठे आए राव काचे करवे रहे न पानी हंस चलिया कहा कुमलानी कुआर कन्या जैसे कर शिकारा क्यों रलिया माने भाजो पोतारा काग उड़ावत पूजा पुरानी कहे कबीरे कथा सरानी सुही कबीर जियो अमल सिरानो लेखा देना एक ठन दूत जम लेना क्या तै खटिया कहाँ गवाया चलो सताब दीवान बुलाया चल द्रवहान चल दरहाल दीवान बुलाया हर फरमान दरगाह का आया रहाओ करोड़ दास गाव किश बाकी लियो नवे राज की राती किस भी खच तुम्हारा सारो सुबह नवास राय गुजारो साध संग जाको हरन लागा धनता सो जन पुरख सुभागा ईत उत जन सदा सुले जन पदार्थ जीत मोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोड़िया भया पराया कोक भी तेई नर भूले खस बसार माटी संग रूले सुही कबीर जी ओ लालत थाके ने सुन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया थाके नैन श्रवण सुन थाकी सुंदर काया जरा हकदी सामा थाकी इकन साक्ष माया बावरी तै ज्ञान विचार न पाया बिरता जन्म गवाया राव तब लग प्राणी तेसरे वो जब लग घट में सासा जी घट जाए तो भाव न जासी हर के जाने वासा जिसको साधु सावे अंतर चूके तसे प्यासा हुक्मे बुझे चौपड़ खेले मन जन ढाली पासा जो जन जान भजे अवगत को तिनका कछु न नासा को कबीते जन का बहु न ढाले ढाले को कबीजे कहो कबीते जन कबू नहारे ढाल जो जाने पासा सुही लत कबीर जीव एक कोट पंच हकदारा पंचे हागा मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की वो ही ऐसा दिन दुखा लार के लोगा मैं को नीत डसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पै पुकारिया तेन हो लिया वारी रहाओ नौ डाडी दस मौसम धावत रही तो बसन न देही डोरी पूरी मापे नाही बवस्टाला लही बहतर कारे कपुर समाया उन्दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम न काई संता को मत कोई निंदो संत राम है एको ओ कबीर मैं सो गुर पाया जाका नाओ बवेको राग सुही बाणी श्री रविदास जी ओ की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद चाह की सार सुहागण जाने तज मन सुख रलिया माणे तन मन दे अंतर राखे अवरा देख ना सुने पाखे सो कर जाने पीर पराए जाके अंतर दाद न पाई रहाओ दुखी दुहागन दोए पाखे नी जन नाहन रंतर भगत ना कि नी पुर सलात का पान दोहेला संगन साथी गवना किला दुखिया दर्द बंद दर आया बहुत प्या जवाब ना पाया कहे रबदास शर्म था तेरी ज्यों जानो त्यों कर गत मेरी सुही जो दिन आवे सो दिन जाहे करना कुछ रहन थिर नाहे संग चलत है हम पी चलना दूर गवन स्वरूप पर मरना क्या तू सोया जा गया ना तै जीवन जग सच कर जाना राव जन जियो दिया सो रिज बराबर है सब घट पीतर हाट चलावे कर बंदगी छाड़ मैं मेरा हृदय नाम समार सवेरा जन्म सरानो पंथ ना सवारा सांझ परी दै दसन दी आरा कह
ਕਹਿਰੇ ਵਧਾਰ ਨਿਧਾਨ ਦਵਾਨੇ ਚੇਤਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਫਨਕਾਨੇ ਸੋਹੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ ਇਹ ਘਰੀ ਫੁਣ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ ਇਹੋ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ ਜਲ ਗਇਓ ਘਸ ਰਲ ਗਇਓ ਮਾਟੀ ਰਹਾਓ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕੁਟੰਬ ਸੇਰਾਓ ਪੀ ਲਾਗੇ ਕਾਢ ਸਵੇਰਾ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਉਰੇ ਤਨ ਲਾਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਰ ਭਾਗੀ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਸਵੇ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ ਮਤੋ ਇੱਕ ਰਾਮ ਕਹੇ ਛੂਟਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਤਬ ਤਾਂ ਲੋਹ ਲੋ ਆਤਮ ਰੋ ਰੋ ਬਾਬ ਲੋਹੀ ਸੋ ਸੋ ਲੋ ਰੋ ਤੈ ਸਹਿ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਰੋਸ ਮੁਝ ਆਪਗਣ ਸਹਿ ਨਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਤੈ ਸਾਫ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜੋਬਨ ਖੋਏ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਣੀ ਰਹਾਓ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਹੋ ਬਿਰ ਹੈ ਜਾਲੀ ਫਿਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜਾਓ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਏ ਬਿਧਣ ਖੂਨ ਦੀ ਬਿਧਣ ਖੂਹੀ ਬਿਧਣ ਖੋਹੀ ਮੁੰਦ ਅਕੇਲੀ ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗ ਮਿਲੀ ਜਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਲਹੋ ਬੇਲੀ ਬਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪੀਣੀ ਉਸੂਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਬੰਸ ਮਾਰ ਸਵੇਰਾ ਸੁਹੀ ਲਲਤ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪਰ ਸਰਵ ਜਾ ਭੂਸ਼ਲ ਤਵ ਤੰਦ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨ ਲਾਏ ਕੁਸਮ ਬੜੇ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ਰਾਓ ਇੱਕਾ ਪੀ ਨੇ ਪਤ ਲੀ ਸਹਿ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿ ਫਰੀ ਸਹੇਲੀਓ ਸੋ ਲਾਏ ਸੀ ਚੱਲ ਸੀ ਡੁੰਮਣਾ ਐ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਦੀ ਸੀ ਕੋ ਅੰਗਾ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਯੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਾ ਮੀਆ ਤੇਰੀ ਗੁਣ ਵਡਾਈ ਓ ਤੂੰ ਦੇ ਸੁਖਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੁਰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਾਈ ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਜਾਈ ਰਹਾ ਜੋ ਕਿਸ਼ਵਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਸਭ ਸੁਣਾਈ।

एक समाना सतगुर पातिया नाम समाना इस कारण सतगुर माए अन्न लागे सह ध्यान राव क्या को तेरी सेवा करे क्या को करे अभिमाना जब अपनी जोत खींचे तू स्वामी तब कोई करो दिखा बखियाना आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निदाना जो आप चलाए तेवे कोई चाले जे आप भावे भगवाना कहत नार तू साचा साहब कौन जाने तेरे काम एक ना कर में दे बढ़ियाई एक परम पवे अभिमाना बलावल महला तीजा पूरा साठ बनाया पूरे बेखो एक समाना इस प्रपंच में साचे नाम की बड़ियाई मत को तो रुगमाना सतगुरु की जिसनो माते आवे सो सतगुरु माए समाना ए बाणी जो जियो जाने ते संत रवे हर नाम माराओ क्यों जुगा का हुन मेरा नाम मनुखा नु एक रंधाना जात संजम तीर्थना जुगा का धर्म है कल मैं कीत हर नामा जुग जुग आपो अपना धर्म है सो देखो वेद पुराना गुरमुख जी नी त्याया हर हर जग ते पूरे परवाना कहत नानक सचे सो प्रीत लाए युके मन भवाना कह सुन सवे सुख पावे हे मत पाए नदाना बलावल मल्ला तीजा गुरुंख प्रीत जिसनु आपे लाए तत् कर बलावल गुर साहब सुहाए मंगल नारी गावे आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए होतन बलहारे जिन हर मन वसाए आ जन को मिलिया सुख पाई यार गुण गावे सह सुपाई राव सदा रंग राते तेरे चाहे हर जीवा बसि मन आपे शोभा साधी पाए गुरमुख मेले मिल आए गुरमुख राते शब्द रंगाए निकर वासा हर गुण गाए रंग चलूले हर सपाए हो रंग दिन उतरे सास समाए अंतर शब्द मिटिया ज्ञान धीरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते दिन बहुर ना फेरा नानक नाम लड़ाए पूरा गुर मेरा बलावल महला तीजा पूरे गुर ते बड़ियाई पाई चिंतना बसिया मन आई होमे माया शब्द लाई दरसा चे गुर ते शोभा पाई जगदीश सेवो मैं वरना का जान धन अंध होवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहा मन की प्रतीत मानते पाई पूरे गुर ते शब्द बजाई जीवन मरण को संसार बेख बो न मरे ना जम पेख तारी ही मैं सब को धान सतगुर गाए गया अभिमान सदी लागा सह ध्यान आंदन गावे एको नाम इस युग में बड़ियाई पाई पूरे गुर ते नाम त्याई जय देखा दरिया समाई सदा सुदाता कीमत नहीं पाई पूरे भागुर पाया पूरे भागुर पूरा पाया अंतर नाम दान दिखाया गुर का शब्द मीठा लाया नानक तस्वीर जी मंत्र सुर पाया राग बलावल महला

रस भोगण यत रूप रसमाते न संग सुख न पाया तन तन साजन सखिए नानक जिनी नाम त्याया जय बसोबट भगनी सखिए संतां संग समाइए तै दुख न भूख न रोग ब्यापे चन कौन ले बुलाइए तै जन्म न मरना आवण जाना निश्चल सरनी पाइए प्रेम बिछो न मोह ब्यापे नानक हर इक ध्याइए दिस धारमन बेदिया प्यारे रतले सहज पाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अंत मंगल गुण गाई सखी सहेली राम रंग राती मंत्रेश पजाई नानक आचरज आचर सु मिलिया कहना किसु न जाई राग बुलावल मल्ला पंज वाह कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रूप सलो पसारा आपे बन जा बिहाराय सो ज्ञान बिरलोई पाए जत जल जागे तत दिष्टाई रहाउ अनक रंग निर्गुण करंगा आपी जला आपी तिरंगा आपी मंदर आपी सेवा आपी पुजारी आपी देवा आप हे जोगा आपी जुगता नानक प्रसादी मुक्ता बुलावल मल्ला पंजवा आप पावन आप सुधरना आप करावन दोष ना लेना आपन वचन आभिजरना आपन विभो आभिजरना रहो आपी माता विवरना आप ही अशल न जाय छलना आप ही गोत आप वर्गना आप ही घट घट आवलिपना आप ही अवगत आप संरचना कौनक प्राप के सब जचना बलावल मल्ला पंजवा भूली मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरबुट भागी पाया सिमर मना राम नाम चितारी बास रहे हृदय गुर चरण प्यारे रहाउ काम करो लो मो माली ना बंधन काट मुक्त गुर की ना दुख सो का तस जन फन मुवाचरण कमल गुर आश्रम दी आगन सागर बूढ़ संसारा नानक बा फकर सतगुर निस्तारा बुलावल महला पंजवा तन मन धन अर्प सब अपना कमल सो मत जत हर हर जपना हर आसा उपरा मागन तुम पेखत शोभा मेरे आंगन रहाओ अनक ज्योत कर बहुत विचारो सात संग मने उधारो मत बोध सुरत नाई चित्राई ता मिलिए जा लय मलाई नैन संतोखे प्राप्त दर्शन पाया को नानक सफल सो आया बुलावल महला पंजवा मात पिता सो साथ न माया सात संग सब दुख मिटाया रवरिया प्रसा में आपे हर जप रसना दुख ना ब्यापे रहाउ देखा भूख बहुत अवत बिया पिया शीतल भय हरा जह जा पिया कूट जतन संतोख न पाया मंत्र अवताना हर गुण गाया देहु भगत प्रवंत्र जामी नानकी बिनंति स्वामी बुलावल मल्ला पंजवा गुरपुरा बुढ़ भागी पाई मेरे साधु गुर नाम त्यागी पर ब्रह्म प्रभ तेरी सरना किल काटे भज गुरु के चरना रह अवर कर्म सब लोकाचार मेरे साधु संग हुए उधार सिमत सात बेद विचारे जपिए नाम जित पार उतारे जन नानक को प्रभ कृपा करिए साधु तुर मिले निस्तरीय बुलावल मल्ला पंजवा गुर का साध दे मैं चीना सरल मनोज पूर्ण सीना संजना का मुख मिल

जिन पेट तोवत सुखी जी दान दे नाओ परा पूर्व ला लिखिया मिलिया ब्याय पासंग रे साध गए पूर्ण जाय भैम से ते लोके पास उतान के दया करी सम्राट गुर बसिया मन नाव नानक की तू टेक प्रा तेरा धार कन कन सम्राट प्रभा रगम पार बुलाव मल्ला पंजवा तुम मिली दीन हिंसा प्रभ सराना करने आना बुझी आप गने बगाना दुख

राव उचे चाकर निचकन में थापे नीवन कहीं न जाइए ठाकुर प्रतापे पेख लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना पै संग चलिया कमाया कन का सुना साहब तेरी सुनाई हर दिन सुन नानक जपे सात साल बल जाई मिलावन मला पंजा जल धोवो इस कर पग पखलावो बार जाओ लख करम लो मने भाई अपने प्राप्ति पाओ दिहो सोनी साध के बीजन तो लाओ राहो अमृत गुण संत बोलते।

तुम्हारे रंगा तुम्हारी सेवा तुम्हारे अंगारा जन की टल सुभाखन जन सो उठन बैठन जन के संगा जन चार राज मुख माथे लागी आशा पूना अंत तरंगा जन पार बम जाकी ने मैं मजन के चार तीर्थ कोट गंगा जन की धूर की ओ मजन नानक जन्म जन्म के घरे कलंगा बलाव मल्ला पंजवा ज्यो पावे तुम हो प्रतपाल पार बम परमेश्वर सतगुरु हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच न सको तुमरी काल तुमरी गत में तुम ही जानो जीव पनसव तुमरो माल अंतर जामी पर स्वामी अनबोल ही जानो हाल तन मन शीतल हुए मारो नानक प्रभु जीव नजर निहाल बलावल मल्ला पंजवा राख सदा प्रभु अपने साथ हो तू हमरो प्रीत मन मोहन तुझ मन जीवन सगला काथ रहाओ रंग तेरा कत घन पीतर प्रा मेरो नाथ गुनाथ जल तगन मैं जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तेवते अरसिमत श्रम सगले लाथ निंदान कर सेवा वर जान सगले गात बुलावल मल्ला पंजवा अपने सेवको कब न बिसारो।

0: का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीता ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक पर पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक सो सेवक सा सा समारे अपने जन का परदा टाके अपने सेवक की आप सर पर राखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मित कोई ना लाखे प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया नीकी कीरी मैं कल राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका शासन काट आवताकु राख दे कर आथ मानस जतन करत भात तिसके करता बिरथ जात मारे न राखे अवरना कोय सब्जियां का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभु बड़ानी बार बार बार प्रभु जपिए पिए मृते मन तन त्रपिए ना व्रत जिन गुरमुख पाया तिसक अवर नाही दिष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नामो सुकर नाम का संग राम रस जो जन तुम तानै मन तन नामे नाम समानै ऊर्त बैठ सोभत नाम कहो नानक जन के सतकाम बोहलो जस जी बादन रात प्रभु अपने जन की नी दात करे भगत आत्म के चाहे प्रभ अपने सुरह समाये जो हुआ वो सो जाने प्रभ न अपने का हुक्म पछानै तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक ना जानो आठ पैर प्रभ से हजूरै को कहो नानक सही जन पूरै मन मेरे तिनकी ओट ले मानता ने अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोका दाता तिसकी सरन सर्व सुख पावे दिसकै तिसकै दर्श पाव मटावे अब्र स्यान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आव जाना हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सत पैरा सलोक सत पुरख जन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की कर प्रतपाल सेवको गुरु सदा दयाल सिख की गुरदुर मत मल हिरै गुरु बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिक्के बंधन काटै गुर का सिक बकार ते हाटे सतगुर सिक्को नाम धन दे गुर का सिक वडपागी हे सतगुर सिक्का हलत पलत सवारे नानक सतगुर सिक्को जी नाल समारै गुर कै ग्रह सेवक जूरै गुर की आग्या मन मै सहै आपस को कर कछ ना जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै मन बेची सतगुर के पास तिस सेवक के काज रास सेवा करत हुए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा च साफ करे नानक सो सेव गुर की बतले बेस बिस वै गुर का मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै सो सत गुर जसे हृदय हर नाओ उनक बार गुर को बल जाओ सरवण धान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता सर्व निधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मै जन जन मै पार ब्रह्म एक आप नहीं किश भरम सहस्यान पैलया न जाइय नानक ऐसा गुरु भागी पाइय सफल दर्शन पेकत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगै कवै गवै सुन कर बचन करन आकाने मन संतोख आत्म पते अन्न पूरा गुराखो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पे के हुए संता गुण बेंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पा जिसले मुलाए जे पाए कुस्त ध्यानेक सतपुरख पूर्ण बाबेक काहु बोला पहुंचत प्राणी कमगोचर पव निर्बानी नराहा नरवैर सुखदाई ताकि कीमत किने ना पाए अनक भगत बंधन करै चरण कमल हृदय सिमरै सत बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवै अमृत सो होय इस पुरखा नाही कदे बनास जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवको दे मो माया के संग ना लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दी प्रगासे नानक परमो दुख तैते नासे तप्त माय ठान वरताई अंत प्या दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे देसे साधु के पूर्ण उपदेशे पहु चुका नृप हुए बसे सगल मयाद मनते के नसे जिसका साथ न कृपा तारी सा संग अपना मुरारी तुत पाई चुके परम गवन सुन नानक हर हर जस सरवण निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पहे प्रकाश साध के संग रच रचना अपनी कलतारी अनक बार नानक बलहारी सलोक
1: सगली शार हर हर नाम कुमाव नानक के उतन सार अष्टपदी संत जना मिल करू विचार एक सिमरनाम आधार अवर पाप सब मीत बिसारू चरण कमर दमर तारू करण कारण सुप्रभ सुमरथ दृढ़ कर गौ नाम हर वाथ हेव तन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माही सर्व रोग नानक मिट जाही जिस तन कहो चार कौन टुटतावै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाच मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पाजार की शरणियन को पावी रोग न जाय रोग मिटे हरब खदलाई सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दर गय परवान मन पर बुद्ध हर कह नाय दय दिस्तावित आवै ठाए ताको बिघन न लागै कोई जा कर दय बस हर सोई कल ताती ठांडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाऊ पौ बिन से पूर्ण हुए आसु भगत पाए आत्म प्रगासु तित कर जाए बस अविनाशी कहु नानक काटे जम फांसी तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभु शिव आप त्याग शरण गुरुदेव यों रतन जन्म का हुई उदार हर हर सिमर प्राण अधारन को पावन छूटन हारे सिमर शास्त्र वेद विचार यार की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस ती रह तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना सुत मीत कुटांबर बनता विनते कहो तुम कवन सन्नाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकारा सहस्ती रथ असवारी झूठ डंब झूठ पाशारी जिन दिए तिस बुझै ना बेगाना नाम बिसार नानक पछताना गुर की मातुले आने भगत मना बहु डूबे सियाने अर की भगत करो मन मीत निर्मल हुए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किलबख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूसा धर को नाव सह सुभाय नानक गुण गावत त्रि उत्तर समैल बिन सजाए हों मैं बिख पैल हुए चिंत बसै सुख नाल सास ग्रासन नाम संभाल शार सियान सगली मना सास संग पावै सच तन हर पूंजी संच करो व्यवहार यहाँ सुख दर गै जयकार सर्व निरंतर एको देख कौ नानक जाकै मस्तक लेख एको जाप एको साला एक सिमर एको मन एक के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरिया पूर्ण पूर रहो प्रभ आपनक विस्तार एक ते पे को राध प्राश्त गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाई नानकी प्रभ बेनती अपनी भगती लाय अष्टपदी जाचक जन जाच प्रभदान कर कृपा देव हर नाम साधना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पू सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभु तुम ते आवो चरण कमल सोन लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एको टेको आधार नानक मांग नाम प्रभ सारू प्रभ की दृष्ट मां सुख हो हरस पावै बिरला कोई जन चाख्या से जंत्र पताने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने सो पर परे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध के संग परे शरणान सब त्यागंतर प्रगासन दिन लबलाग वट भागी जपया प्रभ सूए नानक ना रते सुख होए सेवकी मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ हो दयाल सेवा कीनो सदा निहाल बंधन काड मुक्त जन पाया जन मरण दुख भ्रम गायश पुन्नी शरदा सा पूरी रब रया सत्संग हजूरी जिसका साथन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाये सोकों बिसरा जे काल न भानै सोकों बिसरा जे किया जानै सोकों बिसरा जिन सब किछ दिया सोकों बिसरा जी जीवन जिया सोक बिसरै जे अग्न में राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सोक बिसरै जे बखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर पूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जनते आया साजन संत करे हुकाम त्याग जपु हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहु आप जपु अवरै नाम जपावहु भगत पाई तरिये संसार बिन भगति तन हो सीशार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुखाओ वतनास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुभाओ नेत्रों पेख दर सुख होय मन बिकसै सा चरण धोए भगत जना कह मन तन रंग बिरला को पावै सांग एक बस दी जय कर माया गुर प्रसाद नाम जप लाया ताकि उपमा कही ना जाए। नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शान दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आदि पुर कारण करतार भगत जना के प्राण उधार। जो जो जपै सोहि पुनीत भगत पाए लावै मनहीत हम निर्गुण यार नीचो जानु नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व कौंट मुक्त मोक पाए किनम कर के गुण गायन कराज भोग बढ़ियाई हर के नाम कथा मन पाई। बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हरा रणीत बली सो करनी सो बात नवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमान साध संग प्रभु देव निवास सर्व सुख नानक प्रगाश लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही प्रजा पष्टपदी जब या कार्य कष्ट दृष्टि ता पाप हम तब कहते उता जब धारी आपन सुन समाता बैर रोक संग कमात जाविस का वर्ण जेह न जाप तो तब हरुक शोको कि सब आप जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोह कहा के शोभत पारे में अपन के लिया वर्ती जा नान करने हार न दूजा जब हो प्रभु केवल तनिता बंद मुक्त को किसको गनी। जब एक हर अगम पार तब नरक स्वर कहो कौन हो तारु जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव सगत कहो गा जब आप है आप अपनी जोत रह तब कवन निडर कवन कत डर अपन चलते आप करण हार नान ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख आपन आसन दय जन्म मरण कहो का विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो के सोए जब अभगत गोचर प्रभ एका तब जित्र गुप्त किश पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर या गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बांधे। अपने आप आपी अचर जाना अपन रूप आपी पर जा जय निर्मल पुरख पुरख पद होता दह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन रंकार निर्बान तह कौन कमान कौन अभमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह कसै भो कवन द्रपतावै करण करावन करण हार नान करते का नाही समा जब अपनी शोभा आपन संग बनाए तब कबर भाय महा मित्र सुत भाई जय सर्व कला पै पर बीन तय वेद कते कहा कुचीन। जब अपने आप आप और धारै तो शगन अप शगन कहा बिचारै जय अपन ऊचे अपने आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा बिस्मन बिस्मरे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय शाल शीत भी समाया उहां किसै व्यापत माया आपस को वापया दे ते गुण का नाही पर वे जय एक है एक एक भगवंता तै कौन चिंतक सलागै चिंता जय अपन आप आपतिया रत कौन कथै कौन सुनने हार। बहु बेअंत उच ते उचा नानक आपस को आपह पहुचा जय आप रजो पर पंचा का ते गुण मैं किनो विस्तार पाप पंथ पै कहावत को नर को सुर्ग बंछावताल जाल माया जंजाल हम मैं मोह भरम पै पा दुख सुख मान अपमान कबरकारी युगी वखियान। आपन खेल आप कर देख खेल संकोचै तो नानके कह भगत भगत है आप जह पसरै पासार संत प्रता दो पाक पै धनि उनकी शोभा अनुह बनी आपै कौत करण दचोजा पैरस भोगन निरजोग। जिस भावत से आपन नाही लाभ जिस भावत खेल खिलाव बेशमारथा गण तो तोलै ज्यो बुलावो त्यों नानक दास बोलै शलोक जी जंत की ठाकुरा आपे वर्तनहार नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार अस्पति। आप कथा सुनने हार आपा एका बिस्तार जत सुभाव है त्रिष्ट उपाय अपने भाण लई समाए तुम ते भिन्न नहीं किशो आपन सो सब जगत परो जाको प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम सो जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंतर सब ताके हा दीन दयाल नाथ को नाज सराकत सकोय न मारै सो मुआ सुमनो बिसारै तस्ता जबर कहाँ को जाए सब सरेक निरंजन राय। जी की जुग जा कै सभात अंतर बार जानू साध गुण निधान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूरे दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने करतब जाना आप अंतर जामी रहो ब्यात। प्रतपाल जी अनुभव भांच जो जो रचो सुत सत्य आत हूं जिस भाव असलय मिलाए भक्त कर हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मान्या करण हा नानक एक जानिया जन लागा एक ना तिसकी आसन बिरथी जाए। सेवक सेवा बने आई हुकुम बूझ परम पत पाए स्त्री उपर नहीं बिचार जा कर मन बसया निरंकार बंधन तोर पय निर्वय रंदन पूजे गुर के पैरे लोक सुखी है पर लोक सुहेले नानकार प्रभा पह मेले साह संग मिल करो आनंद गुण गाव ऊपर परमानंद राम नंद तत्करो विचार दुर्लभ जी का करो उधार। अमृत बचन हर की गुण गाऊ प्राण तरण गाय सुहावाट पैर प्रभ एको नेरा मिटाया ज्ञान बिन सया अंधीरा सुनो उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हाथ पाल दो लिहो सुभा राम नाम अंतर और धार पूरे गुर की पूरी दीखिया ਜਿਸ ਮਨ ਬਸਤ ਸਾਚ ਬਰੀਖਿਆ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਜਪੋ।

बड़ समर्था कारण कारण प्रभारा जिस सहमत कोयन लागे पौजल पार उतारा आ जगा भगतन का राखा उत्त कर जीमा नानक नाम महारा

होवे, उस रखवारा और होवे। रखवारे का होए विनास, आगे नरक इहां भोग विलास। एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी रहाओ। सुहागन गाल सोहै हार, संत को बेख बिगसै संसार। कार श्रृंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिर बिचारी। संत भाग ओ पाछ पर गुर प्रसादी मारो हुंडर। साकत की ओ पिंड परायण, हमको दृष्ट परै त्रख डायन। हम तिसका बो जान्या प्यो, जब हुए कृपाल मिले गुरदेव। कहो कबीर अब बाहर परी, संसार कै अंचल लरी। गोंड ग्रह सोबा जा कै रे नाहे, आवत पहिया खुदे जाहे। वाकै अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागन लागै दोख। तन सुहागन महापवीत, तपै तपीसर डोला चीत रहाओ। सुहागन किरपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती। साधु कै ठाडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार। सुहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शनहरी। जो लग प्राण तो लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे। सुहागन भवन त्रै लिया, दस अठ प्राण तीर्थ रस किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वैद्य।

जमीन नहीं बोई है सूत बिना कैसे मणि परोई है कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है साधु बिन तैसे अवगत जाई है जैसे मात पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपड़े धोई कोर बिना कैसे असवार साधु बिन ना ही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजै फेरी खसम दुहागन तज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बोहर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बौ पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहा नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिया पर चै सच है इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बुजारी सो जो बुजार है सोद है पांच पलीते को प्रबोध है नौ नायक की भगत पछान है सो बाजारी हम गुर माने तस्कर सोए जितात ना करे इंद्री कै जतन नाम उचरे कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अत रूप बिचखन गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टहकेव धन ओए संत जिन ऐसी जानी तिनको मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन्न कै साद रहाओ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बै कै संगनिका वन अन्न बाहर जो नर होवै तीन भवन में अपनी खोवै छोड़ै अन्न करै पाखंड ना सुहागन ना ओरंड जग में बक्ते दूधा तारी गुप्ता खा गुप्ती खावे बटका सारी अन्न बिना न होए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया धन अनाद ठाकुर मन मान्या राग गोंड वाणी नाम दियो जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तो ना पुजह हर कीरत नामा अपने राम है पाजरे मन आलसिया रहाओ गया पिंड परता बनारस आस बस्ता मुख बेद चतुर पढ़ता सगल धर्म अछिता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खाट कर्म सहत रहता शिवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तार भाव सिंदं पाज नामा तरस भाव सिंदं गोंड नाद ब्रह्मे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनंत न फेरो रहा ज्यो मीना हेरा पसुआरा सोना घड़ते हिरा सुनारा ज्यो बखई हेरा पर नारी कौडा डारत हिरा जुआरी जह जह देखो तह तह रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड मोको तार ले रामा तार ले मैं अजान जन तरबे न जानो बाप बीठला बांधे रहाओ नरते सुर होए जात निमख में सतगुर बुद्ध सिखलाई नरते उपज सुर को जीत्यो सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैक टिकावो मोहे तेरे नाम अबिलंब बहुत जन उदरे नामे की निज मत ए गोंड मोहे लागती ताला मेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफ है ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बाछा शूटला थन चोखता माखन कूटला नाम दियो नारायण पाया गुर भेट त लख लखाया जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम दियो जियो की घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब भरमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लाकुरी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमै रहाओ हर हर नाक्ष हरे प्राण जय मल कियो बैकुंठ थान सुआ पड़ा।

गण का तरी सो हर नैनो की पुत्री हर हर करत पूतना तरी बाल कातनी कपट परी सिमरन द्रोपद सुत उधरी गौतम सती शिला निस्तरी केसी कंस मथन जन किया जी दान काली को दिया प्रणव नामा ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी गोंड पैरों पूत शीतला तावे खर बाहन ओशार उड़ावे हाँ तो एक रमैया लै हो आन दे बदलावन दह रहाओ शिव शिव करते जो नर त्यावे बर्द चढ़े डोरू टमकावे महामाई की पूजा करे नर से नार होए औतर तू कहियत ही आद पवानी मुक्त की बरिया कहाँ शिपानी गुरमत राम नाम गौमीता प्रणवे नामा यो कह गीता बिलावल गोंड आज नामे बीठल देख्या मूर्ख को समझाऊ रे रहाओ पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आवत देख्या था मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा राम चंद सोपी आवत देख्या था रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी हिंदू अन्ना तुरकु काना दोहा ते ज्ञानी स्याणा हिंदू पूजै देहुरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जह देहुरा नाम सीत राग गोंड बाणी रविदास जियो की घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुकांद मुकांद जपो संसार बिन मुकांद तन होए ओहार सोई मुकांद मुक्त का दाता सोई मुकांद मुक्त का दाता सोई मुकांद हमरा पित माता जीवित मुकंदे मर्त मुकंदे ताके सेव को सदा आनंदे रहाओ मुकांद मुकांद हमारे प्राण जाप मुकांद मस्तक निशान सेव मुकांद करे बैरागी सोई मुकांद दुर्बल तन लादी एक मुकांद करे उपकार हमरा कहां करे संसार मेटी जात हुए दरबार तुही मुकांद जोग जोगतार उपजो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपा लीने काट कीट दास कहर विदास अब तृष्णा चुकी जप मुकांद सेवा ताहू की गोंड जे ओ 68 तीर्थ नावे जे ओ द्वा दस सिला पुजावे जे ओ कूप तटा देवावे करे निंद सब बिरथ जावे साध का निंदक कैसे तरे सर पर जानो नरक ही पर रहाओ जे ओ ग्रहण करे कुल खेत अर्प नार शिंगार समेत सगली सिमरत श्रवणी सुने करे निंद कवने नहीं गुने जे ओ अनिक प्रसाद करावे भूम दान सोभा मंडप पावे अपना बिगार बिराना सांड करे निंद बोजोनी हांड निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कह रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली महला पहला कर

0: लंगर प्रसाद, कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली, लागे तसे त्याना, अभी कभी किछु ना जाना, तेरा एको नाम पहचाना, ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख अज्ञान, शरण प्रभ तेरी कर कृपा, राखो मेरी लाज पते रहाओ, कभू जीड़ा ऊब चढ़त है, कभू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर न रहत है, चारे कुंडा पाले, मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई, एक चले हम देखे स्वामी, पाए बलंती आई, ना किसी का मीत, ना किसी का पाई, ना किसे बाप न माई, प्रणवत नानक जे तू देवें, अंते होए सखाई, राम कली महला पहला, सर्ब सर्ब जोत तेरी पसर रही, जह जह देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरों पार स्वामी, राव जय पीतर कट पीतर बसिया, बाहर काहे नाही, तिनकी सार करे नित साहिब, सदा चिंत मन माही, आपे नेड़ है आपे दूर, आपे सर्ब रहा भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जय देखा तरह समाए, अंतर सहसा बाहर माया, नैनी लागस बाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, बरता पहगा प्राणी, राम कली महला पहला, जित दर वसै कवन दर कही है, दरा भीतर दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया, जीव त्या न मरिया, रहाओ दुख दरवाजा रो रखवाला, आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधिया, सत कै आसन पुरख रह, किंते नामा अंत न जानिया, तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही, जब आसा अंदेसा तब ही, क्यों कर एक कह, आसा पीतर रहे निरासा, तो नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिया, जीव त्यायो मरिया, रहाओ दूजा, राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी, बाजे लोक सुने, पुत पत झोली मंगन कह ताई, भीख्या नाम पड़े, बाबा गोरख जागे, बाबा गोरख जागे, गोरख सो जिन गोए उठाली, करते बार न लागे, रहाओ पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को धरती दीनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साधक और जोगी जंगम, पीर पुरुष बहुतेरे, जे तिन मिला तकीरत आखा, ता मन सेव करे, कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह ऐसे भगत मिले, जन नानक तिन जम क्या करे, ऐसे भगत मिलह जन नानक तिन जम क्या करे, राम कली महला पहला, सुन मा छिंद्रा नानक बोले, वसगत पंच करे नह डोले, ऐसी जुगत जो को पाले, आप तरह सगले कुल तारे, सो अधूत ऐसी मत पावे, एनस सुन समाध समावे, रहाओ भिख्या पाए भगत पै चलै, होवै सो तृप्त संतोख अमुलै, ध्यान रूप होय आसन पावै, सच नाम ताड़ी चितलावै, नानक बोलै अमृत बाणी, सुन मछिंद्रा औदूनी साणी, आसा माहे निरास बुलाए, नचो नानक करते पाए, प्रणवत नानक अगम सुनाए, गुर चेले की संद मिलाए, दिख्या दारू भोजन खाए, छह दर्शन की सोजी पाए, राम कली महला पहला, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध भेटन को आए, नचो देह वड्याई, गुर तार तारण हारिया, देह भगत पूर्ण अविनाशी, हों तुझ को बलिहारिया, रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनी त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी, अखर जिन को आया, जप तप संजम कर्म न जाना, नाम जपी प्रभ तेरा, गुर परमेश्वर नानक भेट्यो, साचा शब्द नबेरा, राम कली महला पहला, सुरती सुरत रलाई एत तन कर तुल्हा लंगें जेत अंतर पाहत सह तू रख एनस दीवा बलै अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीव सब सोजी पाए राहो हच्छी मिट्टी सोजी होए ताका किया मन सोए करनी ते कर चखो टाल एथ उथ निभी नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझै कोए तित घट दीवा नहचुल होए पानी मर ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोलै वाओ न वड्डा होए जापै ज्यों सिंहासन लोए खत्री ब्राह्मण सूद के वैस निरत न पाइया गणी सहांस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनो निवण मनन तेरा नाओ साच भेट बैसन को थाओ सत संतो होवे अरदास ता सुन सद बहाले पास नानक बिरथा कोए न होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाओ प्राप्त पोता कर्म तुसाओ तू देवै मंगत जन चाओ भांडै पाओ पवै तित आए तुर तै छोड़ी कीमत पाए जिन किछ किया सो किछ करै अपनी कीमत आपे धरै गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवै ना को जाए लोक तिकार कहै मंगत जन मंगत मान ना पाया शह कियां गल्लां दर कियां बातां तै ता कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मैं बूंद बूंद मैं सागर कवन बुझै बिद जाने उत्पुज चलत आप कर चीने आपे तत् पछाण ऐसा ज्ञान बिचारै कोई तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ दिन मैं रैन रैन मैं दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गतमित अवर न जाने गुरबिन समझ न होई पुरख मैं नार नार मैं पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी धुन मैं ध्यान ध्यान मैं जाने गुरमुख कत कहानी मन मैं जोत जोत मैं मनुआ पंच मिले गुर भाई नानक तिनका सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ कृपा धारी ता हो मैं विचो मारी जा हर प्रभ कृपा धारी ता हो मैं विचो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बिचारी सो हर जन हर प्रभ पावै एनस भगत करे दिन राती लाल छोड़ हर के गुण गावै राओ तुन वाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पाणी तै तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलया हर निस्तारे जय आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सतगुर भरम चुकाया को नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला शादन भोजन मांगत भागै खुदिया दुष्ट जलै दुख आगै गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई गुरमत भगत पावै जन कोई जोगी जुगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देख्या भीख्या पाए शब्द त्रिपता सह राओ पंच बैल गड्डिया देह तारी राम कला निभै पत सारी धर तूटी गाडो सिर पार लकरी बिखर जरी मांझ पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना दुख सुख सम करना सोग ब्योगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपै निरंकारी सहज गोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन मैं मुंदरा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन तरना एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली महला तीजा घर पहला सत युग सच कह सब कोई घर घर भगत गुरमुख होई सत युग धर्म पैर है चार गुरमुख बूझै को विचार युग चारे नाम वड्याई होई जे नाम लागै सो मुक्त होवै गुरबिन नाम ना पावै कोई रहाओ त्रेतै एक कल कीनी दूर पाखंड वरत्या हर जानन दूर गुरमुख बूझै सोची होई अंतर नाम वसै सुख होई द्वापर दूजा दुबदा होए परम पुलाने जाने दोए द्वापर धर्म दोए पैर रखाए गुरमुख होवै तनाम दृढ़ाए कलयुग धर्म कला एक रहाए एक पैर चलै माया मोह वधाए माया मोह अत गुवार सतगुर भेटै नाम उधार सब जुग मैं साचा एको सोई सब मैं सच दूजा नहीं कोई साची कीरत सच सुख होई गुरमुख नाम वखाणै कोई सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हर नाम ध्याए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वड्याई होई। राम कली महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जे वड भाग होवै वडभागी, ता हर हर नाम ध्यावै, नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै, गुरमुख भगत करो सद प्राणी, हिरदय प्रगास होवै लिव लागै, गुरमत हर हर नाम समाणी, रहाओ हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग होवै वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया, रतन जवे हर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मन मुख नहीं लिया, तिरन ओलै लाख छपाया, मस्तक भाग होवै तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावै, धन धन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा, राम जना मिल पया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाए, दुरमत मैल गई सब निकल, सतसंगत मिल बुद्ध पाए, राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सो हाए रहाओ, जे वड भाग होवै मुख मस्तक, हर राम जना भेट आए, दर्शन संत देह कर कृपा, सब दाल दुख लह जाए, हर के लोग राम जननी के, भाग हीन ना सुखाए, ज्यों ज्यों राम कहें जन ऊचे, नर निंदक डांस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राखो हर जियो, हम दीन तेरी शरणाए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मिलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जननी के, तिन ऊपर हाथ बतावै, गुरमुख साध से प्रभ पाई, कर कृपा आप मिलावै, राम मोको हर जन मेल मन पावै, अम्यो अम्यो रस हर रस है मीठा, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावै, रहाओ हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावै, हम होवत चेरी दास दसन की, मेरा ठाकुर खुशी करावै, सेवक जन सेवै सेवड भागी, हृदय मन तन प्रीत लगावै, बिन प्रीति करै बहु बातां, कूड़ बोल कूड़ो फल पावै, मोको धार कृपा जग जीवन दाते, हर संत पगी ले पावै, हां काटो काट बाढ़ सिर राखो, तिन जित नानक संत चढ़ आवै। राम कली महला चौथा, जे वड भाग होवै बड मेरे, जन मिलदियां ढिल न लाइयै, हर जन अमृत कुंट सर नीके, हर जन अमृत कुंट सर नीके, वड भागी तित ना वाइयै, राम मोको हर जन कार लाइयै, हों पानी पखा पीसों संत आगे, पग मल मल धूर मुख लाइयै, रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे, जो सतगुर मेल मिलाइयै, सतगुर जे वड अवर ना कोई, मिल सतगुर पुरख त्याइयै, सतगुर शरण परे तिन पाया, मेरे ठाकुर लाज रखाइयै, एक अपने स्वाए आए बहें गुर आगे, जो बगुल समाध लगाइयै, बगुला काग नीच की संगत, जाय कुरंक बिखु मुख लाइयै, नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराइयै। राम कली महला चौथा, सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगा गुर चरणी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया, राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर बिन अवर ना कोई बेली, मेरा पिता माता हर सिखाया, रहाओ मेरे एक खिन प्राण ना रह, बिन प्रीतम बिन देखे मरह मेरी माया, तन तन वड भाग गुर शरणी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अवर न कोई सूझै बूझै, मन हर जप जपो जपाया, नाम हीन फिरह से नपटे, तिन कस कस नक वडाया, मोको जग जीवन जिवाल लै स्वामी, रिद अंतर नाम बसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया। राम कली महला चौथा, सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उर तारे, जी दान गुर पूरै दिया, हर अमृत नाम समारे, राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन वड भाग हमारे, रहाओ कोट कोट ते तीसते आवे ताका अंत ना पावे पारे हृदय काम कामनी मांगे रिद मांगे हाथ पसारे हर जस जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो और तारे जे वड भाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे हर जन निकट निकट हर जन है हर राखे कंठ जन तारे नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रत पारे राग राम कली महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगणना बिचारो कोई माटी खा क्या तोपे स्वामी मानस की गते ही मेरे मन सतगुर सेव सुख होई जो इच्छो सोई फल पाओ फिर दुख ना व्यापे कोई रहाओ काचे भांडे साजन वाजे अंतर जोत समाई जैसा लिखत लिखिया तुर करता है हम तैसी किरत कमाई मन तन थाप किया सब अपना एहो आवन जाना जिन दिया सो चेतना आवे मोह अंध लपटाना जिन किया सोई प्रभ जाने हर का महल अपारा भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा राम कली महला पंजवा पवो चरणा तल ऊपर आवो ऐसी सेव कमावो आपस ते ऊपर सब जान हो तो दरगाह सुख पावो संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो हो न कोई सतगुर मिलो नवैन निद पावो इन बिद तत् बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चीनो पाई निकट कर जानो सदा प्रभा हाजर किस स्यों करो बुराई सतगुर मिले मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी तन तन से जन जिनी कल मैं हर पाया जन नानक सद कुरबानी राम कली महला पंजवा आवत हरख न जावत दुखा नह व्यापे मन रोगनी सदा आनंद गुर पूरा पाया तो उतरी सगल बियोगनी ए बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग न व्यापे तै हर हर हर रस भोगनी रहाओ स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचा जत कत पेखो हर गुनी नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तै आकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहा निवासा जय अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कौ नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब में लोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध न जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कह खजाने अचार्य किच कह न जाई बस्त अगोचर पाई रहाओ मोल नाही किच करने जोगा मोल नाही किच करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को सूझी नाही जो पेख है तिस बन आवे सोई जाने करने हारा कीता क्या बेचारा अपनी गतमित आपे जाने हर आपे पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाख्या तृप्त रहे आगाई कौ नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की शरणाई राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है ए जग लूटिया ते बैरी ले साधे जिन बैरी है ए जग लूटिया ते बैरी लैस बाधे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाम जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलो सुखदाई ऊन न काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ न कत हो जाता वर्ण साको जैसा तू है साचे लख पारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसम हमारा राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोले नाही ता हम कैसी ताती एक है एक तू ही एक है तू राया तो कृपा ते सुख पाया रहाओ तू सागर हम हंस तुम्हारे तुम मेहमान कलाला तुम देवो तिल संख न मानो हम पुंछ सदा निहाला हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खेलें सब लाड लडाव, तुम साध गुणिंग हीरा, तुम पूरन पूर रहे संपूरन, हम पी संग अगाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहे नानक कहन न जाए। राम कली महला पंजवा, कर कर ताल पखावज, नैनो माथे वजर बाबा, करनो मद बांसुरी बाजै, जहवा तुन आगाजा, नृत करे कर मनुआ नाचै, आने घूंगर साजा, राम को नृतकारी, पेखै पेखन हार दयाला, जेता साज शिंगारी रहाओ, आखार मंडली तरण सवाई, ऊपर गगन चंदोआ, पवन विचोला करत अकेला, जलते ओपत हुआ, पंच तत् कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दोए जरे चरागा, चौंकुंट पीतर राखे, दस पातो पंच संगीता, एकै पीतर दस पातो पंच संगीता, एकै पीतर साथे, पिन पिन होए भाव दिखावे, सभो निरारी पाखे, घर घर निरत होवे दिन राती, घट घट वाजे तूरा, एक नचावे एक पवावे, एक आए जाए होए तूरा, कहो नानक सो बोहर ना नाचै, जिस गुर पेटै पूरा। राम कली महला पंजवा, ओंकार एक धुन एक राग अलापै, एका देसी एक दिखावै, एको रहा ब्यापै, एका सुरत एका ही सेवा, एको गुरते जापै, पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के तंद सुआओ रहाओ, पंच बजित्र करे संतोखा, सात सुराल चालै, बाजा मान तान तज ताना, पाओ न बिंग काल, फेरी फेर ना होवे कभी, एक शब्द बंद पाल, नारदी नरहर जान हदूरे, घूंगर खड़क त्याग विसूरे, सहज आनंद दिखावे पावे, ए नृतकारी जन्म ना आवे, जे को अपने ठाकुर पावे, कोट मद ए कीर्तन गावे, साध संगत की जावो टेक, कौ नानक तिस कीर्तन एक। राम कली महला पंजवा, कोई बोला राम राम, कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह कारण करण करीम, कृपा तार रहीम रहाओ, कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निवाए, कोई पढ़े वेद कोई कतेव, कोई उड़े नील कोई सफेद, कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बाछ पिस्त कोई सुरगिंदू, कौ नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवनै मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, ए तो चलत पया रहाओ, अगली किच खबर ना पाई, रोवन हार पे उठ सदाई, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाए आंध, ए तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नै को मुआ न मरने जोग, नै बिन सह अविनाशी होग, जो ए जानो सो ए नाहे, जानन हारे को बल जाओ, कौ नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे ना वै जाया। राम कली महला पंजवा, जप गोविंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल रहाओ, कोट जन्म भ्रम भ्रम भ्रम आयो, बड़ा भाग साध संग पायो, बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखै एह विचार। राग राम कली महला पंजवा, घर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चार पुकार, ना तू मानै खट पी एका बात बखानै, दस अष्टी मिल एको कया, ता पी जोगी भेद न लहया, किंगरी अनूप वाजै जोगी आमत वारो रे रहाओ, प्रथमै वसिया सत का खेड़ा, तृतीया मैं किच पया दुतेड़ा, द्वितीया अर्धो अर्ध समाया, एक रहा ता एक दिखाया, एक सूत परोए मणिया, गांठी पिन पिन पिन पिन तनिया, फिरती माला बोबिद पाए, खिंचिया सूत ताई थाए, चौ मैं एक मठ है किया, तह बिखड़े थान अनेक खिड़कियां, खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया, एओं किंकुरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै, रहाओ दूजा। राम कली महला पंजवा तागा करके लाई थिगली लो नाड़ी सुआ है अस्ति अम्बे का कर डंडा तरिया क्या जोगी क्या तू जोगी गर्भ है परया जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ गिरही विभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे टूका तृप्त ना पावे नाथ छोड़ जाचे नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवे चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गोर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवे जाई जिसनो होआ नाथ कृपाला रहरास हमारी गुर गोपाला ना मैं खिंथा ना मैं बस्त्र जन नानक जोगी होआ अस्थिर यों जपया नाथ दिन रहनाई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आन न दिसै कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किन्ने विरलै डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नह काम तन मन शीतल अग्नि निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किछ तेरा साध बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल के वारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कौ नानक सब पर्दा टूटा हां तेरा तू मैं मन बूठा राम कली महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आपने वारी तिस गुर को हो साध बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुरु बाजे अनहल तूरे सतगुरु रहाओ मेहमा जाके गहर गंभीर होए निहाल दे जिस तीर जाके बंधन काटे राय सो नर बोहर न जोनी पाए जाके अंतर प्रगट्यो आप ताको नाही दुख संताप लाल रतन तिस पालै परिया सगल कुटांब ओ जान लै तरिया ना किछ भरम न दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जतकत देखो आप दयाल कौ नानक प्रभ मिले रसाल राम कली महला पंजवा तन ते छुटकी अपनी तारी प्रभ की आग्या लगी प्यारी जो किछ करे सो मन मेरा मीठा ताहे अचरज नैनो डीठा अब मोह जानी रे मेरी गई बलाए बुझ गई तृष्ण निवारी ममता गुर पूरे लियो समझाए रहाओ कर कृपा राख्यो गुर शरणा गुर पुकराए हर के चरना बीस बिसुए जा मन ठहराने बीस बिसुए जा मन ठहराने गुर पार ब्रह्म एक गुर पार ब्रह्म एक ही जाने जो जो कीनो हम तिसके दास प्रभ मेरे को सगल निवास ना को दूत नहीं बहराई गल मिल चाले एक पाई जाको गुर हर दिए सुखा ताको बोहर न लागे दुखा आपे आप सर प्रतपाल नानक रातो रंग गोपाल राम कली महला पंजवा
1: राम नहीं पूर्ण रहत उपदेश करे कर लोक दड़ावे अपना कहे आप ना कमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित रहाओ आगे राख्यो साल ग्राम मन कीनो दह दिस विश्राम दिल क चरावे पाई पाए लोक बचारा अंध कमाए खट कर्मा और आसन धोती भागठ ग्रह पड़े नित पोथी माला फेरे मंगे भी भूत एह बेद कोई न तरयो मीत सो पंडित गुरु शाद कमाए त्रै गुण की उस उतरी माए चतुर बेद पूर्ण हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली महला पंजवा कोट बिघन नहीं आवै ने अनेक माया है ता की चेर अनेक पाप ता के पानी हार जाको मया पई करतार जिसे सहाई होए भगवान अनेक जतन उआ कै सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला पम बेअंत महमा ताकि केतक वरन बल बल जाइए ताके चरण तिन ही किया जप तप गया ध्यान अनेक प्रकार किया तिन दान भगत सोई कल मैं परवान जाको ठाकुर दिया मान साध संग मिल पय प्रगास सहज सुख आस निवास पूरे सतगुर दिया विसास नानक होए दासन दास राम कली महला पंजवा दोष न दीजे काहू लोग जो कमावन सोई भोग आपन कर्म आपे ही बंद आवन जावन माया तंद ऐसी जानी संत जनी प्रगास पिया पूरे गुरबचनी रहाओ तन तन तन कलत मिथ्या बेसार हैवर गैवर चालन हर राज रंग रूप सब कूर नाम बिहीन नाम बिना होए जासी तूर परम पुले बाद हंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरक मह देह बिरदानी साकत एव ही करत बेहानी हर का नाम अमृत कलमा है एहो निदाना साधु पाहे नानक गुर गोविंद स तूठा कट कट रमैया तिन ही डीठा राम कली महला पंजवा पांच शब्द तह पूरन नाद अनहद बाजे अचार्य विस्माद केल करे संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद पवन साध संग बैस गुण गावे तह रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाउ उहां सिमरे केवल नाम बिले पावे ओ विश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार नेह चल आसन बेशुमार डिग ना डोले कतहु ना तावे गुर प्रसाद को इह महल पावे भ्रम पै मोह ना माया जाल सुन समाध प्रभु कृपाल ताका अंत न पारा वार आपे गुप्त आपे पासार जाके अंतर हर हर स्वाद कह न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संते चरण माथा मेरे पौत अनेक बार संते डंडौत ए मन संतन के बलिहारी जाकी ओट गही सुख पाया राखे कृपा तारी रहाओ संते चरण तोय तोय पीवा संते दर्श पेख पेख जीवा संते की मेरे मन आस संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राख्या पड़दा संत प्रसाद मोहे कबू ना कड़दा संते संग दिया किरपाल संत सहाई पहे दयाल सुरत मत बोध प्रगास गहर गंभीर अपार गुणतास जी जंत सगले प्रतपाल नानक संते देख निहाल राम कली महला पंजवा तेरे काज ना ग्रह राज माल तेरे काज ना बिखे जंजाल इष्ट मीत जान सब छले हर हर नाम संग तेरा चले राम नाम गुण गाय ले मीता हर सिमर तेरी लाजर है हर सिमरत जम कछ ना कह रहाऊ बिन हर सगल निरारथ काम सोहना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुखा इहां उहां तेरो उजल मुखा कर कर था के बड़े बडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आसा पूरन होए हर भगतन को नाम आधार संति जीता जन्म अपार हर संत करे सोई परवान नानक दास ना कह कुरबान राम कली महला पंजवा संचे दर्व देह दुख लोग तेरे काज ना अवराजो हर अहंकार होए बरते अंध जम की जेवड़ी तू आगे बंद छाड़ बिडानी तात मुड़े इहां बसना रात मुड़े माया के माते तै उठ चलना राच रहो तू संग सुपना रहा बाल व्यवस्था बारिक अंध भर जोबन लागा दुर्गंध द्वितिया व्यवस्था सिंचे माए बिरद प्या छोड़ चले पछताए जरंकाल पाई दुलब दे नाम बिहूनी होई खे पशु प्रेत मुगते बुरी तिसे न बूझे जिन ए सिरी सुन करतार गोबिंद गोपाल दीन दयाल सदा कृपाल तुम्हें छड़ावो छुट के बंद बख्श मिलावो नानक जग अंध राम कली महला पंजवा कर संजोग बनाई काच तिस संग रहो याना राजाच पित पारे नित सार समारे अंत की बार ऊठ सिदारे नाम बिना सब झूठ प्राणी गोविंद भजन बिन अवर संग राते ते सब माया मूठ प्राणी रहाओ तीरथ नाए ना उतरस मैल कर्म तर्म सब हम में फैल लोक पचारे गत नहीं होए नाम भी हुने चल से रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सोदे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे जिस आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे राखो आप सगल सुखा प्रभ तुमरै हास जित लावे तित लागे स्वामी नानक साहिब अंतर जामे राम कली महला पंजवा जो किछ करे सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना लो डोलन ते चूका ठहराया सत माहे लै सत समाया दुख गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरुष का संग प्या रहाऊ सकल पवित्र सर्व निर्मला जो बरताई सोई पला जह राखे सोई मुक्तान जो जपाए सोई नाम अड़सठ तीर्थ जह साध पग तरे तह बैकुंठ जय नाम उचरे सर्व आनंद जब दर्शन पाइये राम गुना नित नित हर गाइये आपे कट कट रेहा ब्याप दयाल पुर प्रगट प्रताप कपट खुलाने ब्रह्म नाठे दूरे नानक गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमुख हृदय बसे हर के नाम की वड्याई कीमत कह न जाई रहा सूर बीर तीरज मत पूरा सहज समाध गुतुन गहर गंभीरा सदा मुक्ता के पूरे काम जाके हृदय बसे हर नाम सगल सुख आनंद रोग समदासी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कर नाही जाके नाम बसे मन माही दीन दयाल गोविंद गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उतरे चिंद नानक को गुरु दिया नाम संतन की टहल संत का काम राम कली महला पंजवा बीज मंत्र हर कीर्तन गाओ आगे मिली नथा मेथा गुरपुरे की चानी लाग जन्म जन्म का सोया जा हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासे पौजल पार पला रहा नाम निदान तिहाय मन अटल ता छूटे माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा हुए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बिचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मंतन रापे हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावे जाय नाकाई दया तारी गोविंद गुसाई हर हर नानक टेक टिकाई राम कली महला पंजवा संत के संग राम रंग केल आगे जम से होए ना मेल अहंग बोध का पया विनाश दुर्मत होई सगली ना राम नाम गुण गाए पंडित कर्म कांड हंकार न काजे कुशल सेती कर जाहे पंडित रहाओ हर का जस निद लिया लाभ पूर्ण पय मनोरथ साभ दुख नाठा सुख कर में आया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निदान संतोख आया मन पूरा पाए फिर मांगन काहे जाए हर की कथा सुनत पवित्र जिहवा भक्त पाई गत मत सो परवान सरी देव साई नानक ते जन उत्तम पाई राम करी महला पंजवा गोह कर पकड़ी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दे तब ओ चरनी आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुर पूरा पेटत उधार रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान जब उसको कोई मान मन पर हरे तब ओ सेवक सेवा करे मुख बैरावे आंत ठगावे इकत ठोर ओह कही ना समावे उन मोहे बहुते ब्रह्मांड राम जनी की नी खांड खांड जो मांगे सो भूखा रहे तिस संग राचे सो कछु ना लहे इसे त्याग सत संग करे बड़ पागी नानक उतरे राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख पूरन पूरेहा प्रभ एक रतन अमोल हृदय मैं जान अपनी बस तू आप छान पी अमृत संतन प्रसाद बड़े पाग होवे तो पाइये बिन जेवा क्या जाने स्वाद रहा अठ दस बेद सुने कह डोरा कोट प्रगास ना दिसे बंदेरा पशु प्रीत कास संग रचे जिस नहीं बुझावे सो कित बिद बुझे जानन हर हा प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान बिगस बिग सपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेड़न आवे राम कली महला पंजवा दिनो नाम कियो पवित हतन रास निरास एह बित काटी बंद ह सेवा लाए हर भगत राम गुण गाए बाजे अनहद बाजा रस करस गुण गावे हर जन अपने गुरुदेव निवाजा रहाओ आए बने हो पूर्वला पाग जन्म जन्म का सोया जाग गई गिलान साध के संग मंतन रातो हर के रंग राखे राखन हार दयाल ना किछ सेवा ना किछ काल कर कृपा प्रभु की नी दया बूढ़त दुख में काट लिया सुन सुन उपजो मन में चाओ आठ पर हर के गुण गाओ गावत गावत परम गत पाई गुर प्रसाद नानक लेव लाई राम कली महला पंजवा कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाए ताहू का जतन सो संचे जो होची बात माया मोहे हटे डो जात अभागे ते लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ अमृत कौरा बिख्या मीठी साकत की बिद नहनो डीठी कूड़ कपट हंकार जान नाम सुनत मजन बिछूज दिसान माया कान सद ही चूरे मन मुख कभे ना उसत करे निरपो निरंकार दाता तिस्यो प्रीत ना करे गवार सब शाह से साचा शाह बिहमो ताज पूरा पातशाह मोह मगन लपट्यो परम गिरह नानक तरिए तेरी मेहर राम कली महला पंजा रैन दिन जपो हनाओ आगे दरगा पावे थाओ सदा आनंद न हो भी सो कबू न व्यापे हो मेरो खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पे बिस्मादा परम गत पावे हर सिमर प्राणी रहाओ गान मिन देखो सगल विचार नाम बिना को सके न तार सगल उपाव न चाले संग पवजल तरिए प्रव के रंग देही तो न उतरे मैल होमे व्यापे दुबदा फैल हर हर औख जो जन खाए ताका रोग सगल मिट जाए कर की पापा ब्रह्म दयाल मंत्र कबू न बिसर गोपाल तेरे दास की होवा तूर नानक की परम श्रद्धा पूर राम कली महला पंजवा तेरी शन पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू सम्रथ पूरन पार ब्रह्म सो त्याय पूरा जिस करम तरन तान प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा है तुद बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगा पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुर्मत बिन सह साचे हर नाय चरण कमल स्यो लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मरीत पह पागा निरपह मन वसे अमृत नाम रसना नित जपे कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे तोर न आवे अखोट पंडार नानक भगत सुहे हर द्वार राम कली महला पंजा रतन जवे हर नाम सासन तो ज्ञान सुख सहज जया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम को पंडार खाद खच कछ तोट न आवे अंत नहीं हर पारा बार रहा कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी सुन समाध गुफाते आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तह वासन भगत संग प्रव गोष्ट करत तै हरक न सोग न जनु न मरत कर कृपा जिस आप दिवाया सा संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी बर्तन हर मेरी रास राम कली महला पंजवा मेहमा न जाने बेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद अवतार न जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म अंत अपनी गत आप जाने सुन सुन अवर बखाने रहाओ संकरा नहीं जाने पेव खोजत हारे देव देविया नहीं जाने मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरे आपे मेल एक परम एक भक्ति लाए अपना किया आप जनाए संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेख है आखी नहीं लेप तिस पुन ना पाप नानका प्रभ आपे आप राम कली महला पंजा किछु काज ना कियो जान सुरत मत नाही किछ ज्ञान जाप ताप सील नहीं तरम कछु ना जानो कैसा कर्म ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा अवर न कोई भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ रिद न बुद्ध न सिद्ध प्रगास बिखे ब्याज के गा मैं वास कन्हार मेरे प्रभ एक नाम तेरे की मन में टेक सुन सुन जीवो मन ए विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम तू अगंत जी का दाता जिसे जनावे तिन तू जाता जो उपायो तिसे तेरी सेव जो उपायो तिस तेरी आस सगल अरादे प्रभु गुणतास नानक दास तेरे कुर्बान बेअंत साहिब मेरा मेहरबान राम कली महला पंजवा राखन हर दयाल कोट पव खंडे निमख ख्याल सगल अरादे जंत मिलिए प्रभ गुर मिल मंत जियन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी कर कर राता मेरा प्रभ रहा ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद मन मह पय आनंद तारन तन हर शरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार उच्चे ते उच अपार सो मत सार जित हर सिमरी जय कर कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाओ नानक जपिया गुर मिल नाओ राम कली महला पंजवा सगल सियाण पछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे सही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यो आसा मनसा पूर्ण होवे पाए बे सगल निदान गुर स्यो रहाओ दूजा नहीं जाने कोए सतगुर निरंजन सोए मानुख का रूप न जान मिली निमाने मान गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाहे हर का नाम मांग निदान ता दर गए पावे मान गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत सतगुर पय दयाल नानक दास निहाल राम कली महला पंजवा होवे सोई पलमान अपना तज मान दिन रैन सदा गुण गाओ पूर्ण ई सुहाव आनंद कर संत हर जप छाड़ स्यान बहुत चतुराई गुर का जप मंत निर्मल हाव एक की कर आस पितर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार पवजल उतरे पार देवन हार दातार अंत न पारा वार जाके कर सर्व निदान राखन हर निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपे तिसकी गत होए नानक करम प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दुलाब दे सवार जाहे ना दरगाहार हालत पल तो दोहे बढ़े आद की बेला ले चढ़ाई राम के गुण गाओ हालत पल दोहे होवे हालत पलत होहे दोवे सुहेले अचार्ज पुरख त्याओ रहा उठत बैठत हर जाप बिनसे सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म श्रेष्ठ धर्म हर सिमन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरे पार पूरन तेरी होवे आस चमकी कटिए तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजे नानक सुख सहज समीजे राम कली महला पंजम जिसकी तिसकी करमान आपन लाहे गुमान जिसका तू तिसका सब कोए तिसे अरा सदा सुखोए कहे परम पर मैं बिगाने ना बिना किच काम न आवे मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहा जो जो करे सोई मान जो जो करे सोई मान ले हो बिन माने रल हो वैखे तिसका पाना लागे मीठा गुर प्रसाद बिले मन बूठा बेह परवाह अगोचर आप आठ पैर मनता को जाब जिस चित आए बिन से दुखा हालत पल तेरा उजल मुखा कौन कौन उदरे गुण गाए गण ना जाई कीम न पाए बूढ़त लो सा संग तरे नानक जिसे प्राप्त करे राम कली महला पंजम मन में जा भगवान गुर पूरे दिनो मत मिटे सगल भय त्रास पूर्ण हुई आस सफल सेवा गुरुदेवा कीमत किछ कह न जाई साचे सच अलख पेवा रहा कनक रावन आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा कर नीत सच सहज सुख पावे मीत साहिब मेरा अतपारा खिन में साप उठापन हारा तिस बिन अवर न कोई जन का राखा सोई कर कृपा अरदास सुनीजे अपने सेवक को दर्शन दीजे नानक जापी जप जाप सब ते उच जां का प्रताप राम कली महला पंजम बेथा परवासा लोक ठाकुर पर तेरी टेक अवर छुटी सब आस अचिंत ठाकुर पेटे गुणतास एको नाम त्याय मन मेरे कारज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहो तुम ही करन करन चरण कमल हर शरण मन तन हर ओहि त्याया आनंद हर रूप दिखाया तिसी की ओट सदीव जाके कीने है जीव सिमत हर कत निधान राखन हार निदान सर्व की रेन हो भी जय आप मिटाए मिली जय अंतन त्याये नाम सफल नानक काम राम कली महला पंजवा कारण करन करीम सर प्रत पार रहीम अलह अलख अपार खुद खुदाए बड बेशुमार ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रहा सर बठाई रहा जगना जग जीवन माधो पौ पंजन रिदमाहे अराधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वतन मुकंद मेहरबान मौला तू ही एक पीर पे काम बल सेख दिला का मालक करे हाक कुरान कते ते पाक नारायण नर हर दयाल रमत राम कटकट आधार बास देव बस सब ठाए लीला के चलखी ना जाए मेहर दया कर करने हार भक्त बंदगी दे से जनहार कौ नन गुर खोए परम एको अलो पार ब्रह्म राम कली महला पंजमा कोट जन्म के बिन से पाप हर हन जप नाही संताप गुर के चरण कमल मन वसे महा विकास तन ते सबन से गोपाल को जस गाओ प्राणी अकात कथा साची प्रपूरन ज्योति जो समाणी रहा तृष्णा पूक सब नासी संत पर साध जपया विनाशी रैन दिनस प्रभ सेवक मानी हर मिलने की एह निशानी मिटे जंजाल होए प्रभ दयाल गुर का दर्शन देखने परापूर बला कर्म बन आया हर के गुण नित रसना गाया हर के संत सदा परवान संत नाम मस्तक निशान दास की रेन पाए जे कोए नानक तिस की परमगत होए राम कली महला पंजवा दर्शन को जाइए कुर्बान चरण कमल हृदय तर ध्यान तूर संतन की मस्तक लाए जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए जिस पेटत मिटे अभिमान पार ब्रह्म सब नदरी आवे कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ गुर की कीरत जपिए हर नाओ गुर की भगत सदा गुण गाओ गुर की सुरत निकट कर जान गुर का शब्द सत कर मान गुर बचनी सम सर सुख दुख कदे न व्यापे तृष्णा भूख मन संतोख सर्व शब्द गुर राजे जप गोबिंद पढ़दे सब काजे गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुरदाता दयाल बख्शेंद गुर चनी जा का मन लागा नानक दास से पूरन भागा राम कली महला पंजवा किस पर वासे बिचरे पवन मूड मुग्ध तेरा संगी कवन राम संगी तिस गत नहीं जाने पांच टवारे सीमित कर माने सो कर सेव जित उदरे मीत गुण गोविंद रविये दिन राती साध संग कर मन की प्रीत रहाओ जन्म बिहानो अहंकार अरबाद तिप्त न आवे बिख्या साध परमत परमत महा दुख पाया तरी न जाई दुतर माया काम न आवे सोकार कमावे आप बीज आपे ही खावे राखन को दूसर नहीं कोए तो निस्तरे जो कृपा होए पतित पुनीत प्रभ तेरो नाम अपने दास को कीजे दान कर कृपा प्रभ गत कर मेरी शरण गही नानक प्रभ तेरी राम कली महला पंजा एह लोके सुख पाया नहीं पेटत धर्म राया हर दरगा सोभा बांत हुन गर्भ नाही बसांत जानी संत की मित्राई कर कृपा दीनो हर नामा पूर्व संजोग मिलाई रहाओ गुर के चरण चित लागा तन तन संजोग सपागा संत की तूर लाकी मेरे माथे किल वेख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध प्राणी धन का सफल दर्श डीठा नाम प्रभु का कट कट बूठा मिटाने सब कल क्लेश जिससे उपजे तिस मह प्रवेश प्रगटे अनूप गोबिंद प्रभ पूरे नानक बखशिंद राम कली महला पंजा गौ कोस चारे सारदूल कौडी का लख हुआ मूल बकरी को हसी प्रतपाले अपना प्रभ नदर निहाले कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे बरना साको वह गुण तेरे रहाओ दीसत मास ना खाए बिलाई महाकसाब शुरी सट पाई कर्ण हार प्रभ हृदय बूठा फाथी मछरी का जाला टूटा सूखे काष्ट हरे चलूल ऊंचे थल फूले कमल अनूप अग्निवारी सत गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव अकीर्तक ना का करे उधार परम मेरा है सदा दयार संत जना का सदा सहाई चरण कमल नानक शरणाई राम कली महला पंजवा पांच सिंह राखे प्रभ आमार सस बग्याड़ी लई निवार तीन अवध की चुकी केर साध संग चुके पै फेर सिमर सिमर जीवा गोबिंद कर कृपा राख्यो दास अपना सदा सदा साचा बख्शेंद रहाओ दाज गए त्रिण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रपैर अंध रूप प्रगट्यो तवधान प्रेम भक्त जोरी सुख मान सागर तरयो बाछर खोज खेद ना पायो नह फुन रोज सिंध समायो कटके माहे कर हर को किछ अचार्ज नाहे जो छूटो तो जाए प्याल जो काढ़ो तो नदर निहाल पाप पुन हमरे बस नाहे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली महला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे ब्या पया तोहे कुदम करे गाडर ज्यो छेल अचेत जाल काल चकर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साच तना रहाओ उने काज ना होवत पूरे काम क्रोध मद सद ही चूरे करे बिकार जीरे के ताई गाफल संग न तसुआ जाई तरत तोहो अनिक छल जाने कौडी कौडी को खाक सिर शाने जिन दिया तिसे न चेते मूल मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जपै दयाल हे मन हुआ सादर वाल हस कमल लड़ली नो लाए नानक साचे साच समाए राम कली महला पंजवा राजा राम की शरणाए निरपो पय गोबिंद गुण गावत साध संग दुख जाए रहाओ जाके राम से मन माही सोजन दुतर पेखत नाही सगले काज सवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसके मस्तक हाथ गुर तरे सो

0: जय ठाकुर सोतै क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जाके सिमरै, निमख नाता को गायो, माया को मद कहाँ करत है, संग न काहू जाई, नानक कहत चेत चिंता मन होय है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनी अर तप्त रहै, सात अतिसो पौन चलारे, जुग जी खेले थाव कैसे, जीवन तलब निवार होवे परवाना करे तंजाना, कल लखन विचार हम कित है का देश न आया सुनिए, तीर्थ पास न बैठा, दाता दान करे तह नाही, महल उसार न बैठा, जे को सत करे सो शीजे, तप कर तप न होई, जे को नाम ले बदनामी, कल के लखन एई, जिसक दारी तिसे खुआरी, चाकर के हे डरना, जासक दारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथो मरना, आख गुना कल आई है, तेहो गुजुग केरा देहत पाव, जे गुण ग्रहे ता पाईए राव, कल कल वाली सरा निवेड़ी, काजी कृष्णा हुआ, बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण, करनी कीरत लहया, पत बिन पूजा सत बिन संजम, जत बिन काहे जनेऊ, नावो तोबो तिलक चढ़ावो, सुच बिन सोच न होई, कल परवानक तेव कुरान, पोथी पंडित रहे पुराण, नानक नाव पया रहमान, कर करता तू एको जान, नानक ना मिले वड्याई, एदू उपर करम नहीं, जे कर होवे मंगन जाइए, फिर ओ लामा मिले तही। राम कली महला पहला। जग पर बोधे मढ़ी बदावे, आसन त्या कहे सच पावे, ममता मोह कामन हितकारी, ना अदूती ना संसारी, जोगी बैसर हो दुविधा दुख पागे, कर कर मांगत लाज ना लागे रहाओ, गावे गीत ना चीने आप, ज्यो लागी निवरै प्रताप, गुर के शब्द रचे मन भाए, पिख्या सहज विचारी खाए, पसम चढ़ाए करे पाखंड, माया मोहे सहे जम डांड, फूटे खा पर पीख ना पाए, बंधन बाधया आवे जाए, बिंदना राखे जति कहावे, माई मांगत रह लोभावे, निर्दया नहीं जोत उजाला, बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला, पेह करे किंता बहु खटुआ, झूठो खेल खेल है बहु नटुआ, अंतर अगन विचिंता बहु जारे, मिन कर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फनक कना बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या बग्यान, जेवा इंद्री साध लुवाना, पशु पही नहीं मिटे निशाना, त्रिविद लोगा त्रिविद जोगा, शब्द बिचारे चूक सोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत बिचारे सोए, तुझ पै नौ निद तू करने जोग, थाप उथापे करे सोग, जत सत संजम सच सच सुचीत, नानक जोगी तिर पवन मीत। राम कली महला पहला। खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द तुन अंतर जागी, बाजे अनहद मेरा मन लीना, गुरबचनी सच ना पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाइये, गुरमुख मेहर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाये रहाओ, माया मोह विबरजर समाये, सतगुर पेटे मेल मिलाए, नाम रतन निर्मोलक हीरा, तितराता मेरा मन तीरा, हमे ममता रोग न लागे, राम भगत जम का पह पागे, जम जंदार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अंदिन जागर हे लिवलाई, जीवत मुक्त गत अंतर पाई, अलिप्त गुफा में रहे निरारे, तस्कर पांच शब्द संगारे, पर कर जाए न मन डोलाए, सहज निरंतर रहो समाए, गुरमुख जागर हे अदूता, सद बैरागी तत् परोता, जग सूता मर आवे जाए, बिन गुर शब्द न सोजी पाए, अनहद शब्द बजे दिन राती, अवगत की गत गुरमुख जाती, तो जानी जा शब्द पछाणी, एको रव रहा निर्वाणी, सुन समाद सहज मन राता, तज हों लोबा एको जाता, गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला पहला। साहा गणे न करे विचार, साहे ऊपर एक अंकार, जिस गुर मिले सोई बिद जाने, गुरमत होए ता हुकम पछाणे, झूठ ना बोल पांडे सच कहिए, होमे जाए शब्द कर लहिए रहाओ, गण गण ज्योत कांडी कीनी, पढ़े सुनावे तत न चीनी, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार, और कथनी बदो न सगली शार, नहावो धोवे नहावै धोवे पूजे सहला, बिन हरा ते मैलो मैला, गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ, मुक्त प्राण जप हर किरतारथ, बाचे बाद ना बेद विचारे, आप डुबे क्यों पितरा तारे, कट कट ब्रह्म चीने जन कोए, सतगुर मिले ता सो जी होए, गणत गणिये सहसा दुख जिये, गुर की शरण पवे सुख थिए, कर अपराध शरण हम आया, गुर हर पेटे पूर्व कमाया, गुर शरण आइये ब्रह्म न पाइये, परम पुलाइये जन्म मर आइये, जम दर बादो मरे बिकार, नारी दे नाम ना शब्द अचार, एक पांडे पंडित मिसर कहावे, दुबदा राते महल ना पावे, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मदे को जन आपार, एक बुरा भला सच एक है, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेके, गुरमुख बेली एको जानिया, आवन जाना मेट समाणिया, जिनके हृदय एक अंकार, सर्व गुणी साचा विचार, गुर के पाने कर्म कमावे, नानक साचे साच समावे, रामकली महला पहला, हट निग्रह कर काया शीजे, वर्त तपन कर मन ही पीजे, राम नाम सर अवन पूजे, गुर सेव मना हर जन संग कीजे, जम जनदा जो है नहीं साके, सरपन डास ना सके, हर का रस पीजे रहाओ, बाद पड़े रागी जग पीजे, त्रैगुण बिख्या जन मरीजे, राम नाम बिंदुक सहीजे, चाड़स पवन सिंहासन पीजे, न्योली कर्म खट कर्म करीजे, राम नाम बिन बिरथा सास लीजे, अंतर पांच अगन क्यों तीरज तीजे, अंतर चोर क्यों साधल हीजे, गुरमुख होए काया गढ़ लीजे, अंतर मैल तीर्थ परमीजे, मन नहीं सूचा क्यों सोच करीजे, किरत पिया दोष का को दीजे, अन ना खाहे दही दुख दीजे, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजे, मनमुख जन्मे जन्म मरीजे, सतगुरु पूछ संगत जन कीजे, मन हर राचे नहीं जन मरीजे, राम नाम बिन क्या कर्म कीजे, ऊंदर दूंदर पास तरीजे, तुरकी सेवा राम रवीजे, नानक नाम मिले कृपा प्रभ कीजे, राम कली महला पहला, अंतर उत्पज अवर न कोई, जो कहिए सो प्रवते होई, जुगे जुगंत साहिब सच सोई, उत्पत पालो अवन ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया, हर के नाम ना लगे जम तीर रहाओ, नाम तन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जेहवा सूची साचा बोल, करदर साचा नाही रोल, एक बन में बैसे डूगर स्थान, नाम विसार पचे अभिमान, नाम बिना क्या ज्ञान त्यान, गुरमुख पावे दर गैमान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लहे सजाई, बिन नावे ज्यो जल बल जाई, सिद्ध साधे केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभिमान अपेवा, कर मिले पावे सच नाओ, तुम शरणागत रहो सुभ पाओ, तुम ते उपजो भगति पाओ, जप जापो गुरमुख नाओ, होमे गर्व जाय मन पीने, झूठ ना पावस पाखंड कीने, बिन गुर शब्द नहीं कर बार, नानक गुरमुख तत् विचार, राम कली महला पहला, जो आया त्यों जावे बौरे, जो जन्मे त्यों मरन पिया, जो रस भोग किए ते ता दुख लागे, नाम बिसार पव जल पिया, तन तन देखत गर्भ गया, कन कामनी स्यों हेत बदाए, की नाम बिसारे परम गया रहाओ, जात सात संजम सील न राख्या, प्रेत पिंजर में काष्ट पिया, पुन दान इशनान न संजम, सा संगत बिन बाद जया, लालच लागे जनाम बिसार्यो, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गह मारे, सुरत नहीं मुख काल गया, एनिस निंदा तात पराई, हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुर शब्द ना गत पत पावे, नाम नाम बिन नरक गया, खिन मैं बेस करे नटुआ ज्यों, मोह पाप मैं गलत गया, इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन पिया, करे बिकार बिथारक नेरे, सुरत शब्द बिन भरम पिया, हाँ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आवत देखे, साकत मन अभिमान पिया, जिसका इहो तन तन सो फिर लेवे, अंतर सहसा दुख पिया, अंत काल किस साथ न चाले, जो दिसे सब तिसे मिया, आद पुरख अपरंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पिया, मुए को रोबे किसे सुनावे, पै सागर असराल पिया, देख कुटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पिया, जहाँ आए ता तिने पठाए, चाले तिने बुलाए लिया, जो किसका ना सो कर रहया, बख्शन हारे बख्श लिया, जिन इहो चाख्या राम रसन, तिन की संगत खोज पिया, रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पिया, दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरख सोग ते बेरक्त पिया, आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए लिया, राम कली दखनी महला पहला, जात सात संजम साच दड़ाया, साच शब्द रसलीना, मेरा गुर दयाल सदा रंग लीना, एने सरहे एक लिव लागी, साचे देख पतीना रहाओ, रहे गगनपुर देश समय सर, अनहत शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन पर पुलीना, जेहवा रंग रसीना, मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत बचार पतीना, एक मैं सर्व सर मैं एका, ए सतगुर देख दिखाई, जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लख न जाई, दीपक ते दीप परगासिया, ते पवन जोत दिखाई, सच्चे तख्त सच महली बैठे निरपो ताड़ी लाई, मोहे गया बैरागी जोगी कटकुट किंगरी बाई, नानक शन प्रभु की छूटे सतगुर सच सखाई, राम कली महला पहला, ओहट हस मड़ी कर छाया, तन गगन कल तारी, गुरमुख केती शब्द उदहारी, संतो रहाओ, ममता मार होम में सोखे, ते पवन जो तुम्हारी, मनसा मार मने में राखे, सतगुर शब्द बिचारी, सिंगी सुरत अनाहत बाजे, कट कर जो तुम्हारी, पर पांच बेण तही मन राख्या, ब्रह्म अगन पर जारी, पांच तत मिल सहनी सदीपक, निर्मल ज्योत अपारी, रब सक्स लोके हे तन किंगरी बाजे, शब्द निरारी, सेव नगरी में आसन अलख अगम अपारी, काया नगरी एहमन राजा, पंच बसे बिचारी, शब्द रवे आसन कर राजा, अदल करे गुणकारी, काल बिकार कहे कह बपरे, जीवत मनुआ मन मारी, ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त, आपे करता कारी, काया सोध तरे पव सागर, आत्म तत् विचारी, गुर सेवा ते सदा सुख पाया, अंत शब्द रविया गुणकारी, आपे मेल ले गुणदाता, हमे तृष्णा मारी, तै गुण मेटे चौथे वरते, एहा भक्त निरारी, गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने, हृदय एक मुरारी, मनुआ अस्थिर शब्द राता, इहा करनी सारी, भेद बाद ना अपाखंड, औदु गुरमुख शब्द विचारी, गुरमुख जो कमावे औदु, जत सत शब्द विचारी, शब्द मरे मन मारे औदु, जोग जुगत विचारी, माया मोह पजल है अवधु, शब्द तरे कुल तारी, शब्द सूर जुग चारे औदु, बाणी भक्त विचारी, ए मन माया मोहे औदु, निकसे शब्द विचारी, आपे बख्शे मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी, राम कली महला तीजा, अष्टपदियां
1: जोगी खिंता कर दू दया, कर तू दया, आवन जान बिभूत लाए, लाए जोगी, ता तीन पवन जिन लिया, ऐसी किंगरी बजाए जोगी, जित किंगरी अनहद वाजे, हरस्यों रहै लिवलाए, रहाओ सत संतोख पत कर चोली, जोगी अमृत नाम भुगत पाई, ध्यान का कर डंडा जोगी, सिंही सुरत वजाई, मन दृढ़ कर आसन बैस जोगी, ता तेरी कल्पना जाई, काया नगरी मह मंगन चढ़ै जोगी, ता नाम पल्लै पाए, इत किंगुरी ध्यान न लागै जोगी, ना सच पल्लै पाए, इत किंगुरी शांत ना वै जोगी, अभिमान ना विचो जाए, पाओ पाओ दोए पतल जा लाए जोगी, एहो शरीर कर डंडी, गुरमुख होवै ता तंती वाजै, इन बिद तृष्णा खंडी, हुकम बुझै सो जोगी कहिया, एक स्यों चित लाए सहसा तूटै, निर्मल होवै जोग जुगत इव पाए, नदरी आवदा सब किछ बिनसै, हर सेती चित लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागै, ता सोजी पाए, एहो जोग ना होवै जोगी, जे कुटंब छोड़ पर पवन करै, ग्रह शरीर मैं हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है, एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इस मैं रोग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन भेख करे जोगी, रोग ना जाए गवाया, हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए, गुरमुख होवै सोई बुझै, जोग जगत सो पाए, जोगै का मार्ग बिखम है जोगी, जिसनो नदर करे सो पाए, अंतर बाहर एको वेखै, विचो भरम चुकाए, विण वजाई किंगरी वाजै जोगी, सा किंगरी वजाए, कहै नानक मुक्त होवै जोगी, सच्चे रह समाए, राम कली महला तीजा, पात खजाना गुरमुख जाता, सतगुर बूझ बुझाई, संतो गुरमुख दे वड्याई, रहाओ सच रहो सदा, सहज सुख उपजै, काम क्रोध विचो जाई, आप छोड़ नाम लिव लागी, ममता शब्द जलाई, जिस ते उपजै तिस ते बिनसै, अंते नाम सिखाई, सदा हजूर दूर नह देखो, रचना जिन रचाई, सच्चा शब्द रवै कट अंतर, सच्चे स्यों लिव लाई, सतसंगत मैं नाम निर्मोलक, वड्डै भाग पाया जाई, भरम न भूलो लो सतगुर सेवो मन रखो एक ठाई मेरे नाम है सब भूली फिर दी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी मह आसन बैसै गुर शब्दी जोग पाई तारत तातर बाजी शब्द निवारे नाम सहमन आई देहो शरीर सर्वर है संतो इस्नान करे लिवलाई नाम इस्नान करै सेजन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण चेत नाम चेतै नाही बिन नावै बिनस जाई ब्रह्मा बिशन महेश त्रै मूर्त त्रिगुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिकटी छुट्टै चौथे पद लिवलाई पंडित पढ़ै पढ़वाद बखाणै तिन्ना बूझना पाई बिख्या माते भरम भुलाए उपदेश कहै किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई बाणी लागै सो गत पाए शब्दे सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नवंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाणा बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिसमादि चित अदिष्ट लगाई अदिष्ट सच्चा रहे निरालम ज्योति जोत मिलाई हों गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ

कहना कछु ना जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब कुछ मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावै सा पूजा होवै, पाणा मन वसाई, पूजा करै सब लोक संतो, मन मुख थाए न पाई, शब्द मरै मन निर्मल संतो, यो पूजा थाए पाई, पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई, बिन नावै होर पूज ना होवी, परम पुली लोकाई, गुरमुख आप पछाणै संतो, राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुरु शब्दी थाए पाई, पूजा करै पर बिद नहीं जाणै, दूजै पाए मल लाई, गुरमुख होवै सो पूजा जाणै, पाणा मन वसाई, पाणे ते सब सुख पावै संतो, अंते नाम सखाई, अपना आप ना पछाणै संतो, शब्द आप पछाणै, गत मित तिन ही पाई, एहो मनुआ सुन समाद लगावै, ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम बखाणै, सतसंगत मेलाई, गुरमुख गावै आप गवावै, दर साचै सोभा पाई, साची बाणी सच बखाणै, सच नाम लिवलाई, पै पंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सुखाई, सब किछ आपे आप वरतै, नानक नाम वडियाई, रामकली महला तीजा, हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल शब्दे मैल उतारी, संतो गुरमुख नाम निस्तारी, सच्चा नाम वस्या कट अंतर, करता है आप सवारी, रहाओ पारस परसे फिर पारस होए, हर जियो अपनी कृपा धारी, एक पेख करै फिरै अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी, एक अंदिन भगत करै दिन राती, राम नाम उरतारी, अंदिन राते सहजे माते, सहजे हो मैं मारी, पै बिन भगत न होई कब ही, पै पाए भगत सवारी, माया मोह शब्द जलाया, ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता, आपे बख्श भंडारी, तिस क्या गुणा का अंत ना पाया, थौ गावा शब्द विचारी, हर जियो जपी हर जियो सालाही, विचो आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया, अखुट सच्चे पंडारी, अपनिया भगता नो आपे तुठा, अपनी कृपा कर तल धारी, तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गावन शब्द विचारी, जियो पिंड सब किछ है, तिसका आखण बिखम बिचारी, शब्द लगे सही जन निस्तरे, पौजल पार उतारी, बिन हर साचे को पार ना पावै, बूजे को बिचारी, ज्योत्र लिखिया सोई पाया, मिल हर शब्द सवारी, काया कंचन शब्दे राती, साचे नाए प्यारी, काया अमृत रही पर पूरे पाईऐ शब्द विचारी, जो प्रभ खोजै सोई पावै, होर फूट मोए अहंकारी, बादी बिनसै सेवक सेवै, गुर कै हेत प्यारी, जो जोगी तत् ज्ञान बिचारे, नौमै तृष्णा मारी, सतगुर दाता तिनै पछाता, जिसनो कृपा धारी, सतगुर ना सेवै माया लागे, डूब मोए अहंकारी, जिचर अंदर सास तिचर, सेवा कीजै जाए मिलिया राम मुरारी, अनदिन जगतर है दिन राती, आपे प्रे प्रीत प्यारी, तन मन वारी वार कुमाई, अपने गुर विटो बलिहारी, माया मोह बिन सजाएगा, उबरे शब्द विचारी, आप जगाए सोई सही जागे, गुर कै शब्द विचारी, नानक सोए सही मुए जे नाम ना चेतै, भगत जीवे विचारी, रामकली महला तीजा, नाम खजाना गुरते पाया, तृप्त रहे आगाई, संतो गुरमुख मुक्त गत पाई, एक नाम वस्या कट अंतर, पूरे की वडियाई, रहाओ आपे करता आपे भुगता, दिंदा रिजक सबाई, जो किछ करना सो कर रहिया, वरना करना जाई, आपे साजे सृष्ट उपाय, सिर सिर तंदै लाई, तिसै सरे वो ता सुख पावो, सतगुर मेल मिलाई, अपना आप उपाए, अलख ना लखना जाई, आपे मार जीवाले आपे, तिसनो तिल ना तमाई, एक दाते एक मंगते, कीते आपे भगत कराई, से वडभागी जिनी एको जाता, सच्चे रहे समाई,
आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहण ना जाई आपे दुख सुख पाए अंतर आपे भरम भलाई वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंद फिरै लोकाई जिन्नी चाखिया तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई एक ना नामो आप भलाए एक ना गुरमुख दे बुझाई सदा सदा सलाहे सलाहियो संतो तिस दी वड्डी वड्याई तिस बिना वरना कोई राजा करत पावस बणत बनाई न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुकुम मनाई तिस तिस नो प्राणी सदा त्यावो जिन गुरमुख बणत बनाई सतगुर भेटै सो जन सो सीजै जिस हिरदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहिया विसमाद मेरा प्रभ रविया सरब थाई रामकली महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन्ही किया परविरत पसारा किन्ही किया पूजा विस्थारा किन्ही निवल भयंगम सादे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा तेरा

प्रगटे प्रभ आए जियो ग्रहलाल आए पूर्व कुमाए तिनता की उपमा क्या गणा बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कौन रसना गुणपणा आप वे मिलाए गए कंठ लाए दिस बिना नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब मेरे आसमाय जियो राग राम कली मला पुनरा रण चुनजनड़ा गाव सखी हर एक त्यावो सतगुर तुम सेव सखी मन चिंदे अड़ा फल पावो राम कली मला पुनरा रती श्लोक का सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रपार ब्रह्म बाछो पार ब्रह्म कर बंधन प्रपार ब्रह्म बाछो साधे तूर आप निवार हर हर पजो नानक प्रपरपूर किल्व काटन पै हरन सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नित्य आय छंत जस गावो वड भागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुति माह मूर्त घड़ी गुण उचरित शोभा वन जियो गुण रंग राते धन ते जन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रभ पाया पुन दान न तुल किरिया हर सर पापा हंत जियो मेरवत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगम गोचरो चर कमल नमस्कार कथनी सात उद्भाव सी नानक नाम उधार संत शरण साजन परो स्वामी सवर नंद सुकेते हरियाथिया नानक जप भगवंत शांत रुत सरस बसंत माह चेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाह मिलया मौलिया मंत सा जियो कर नाह नेचल अन सखिये चरण कमल प्रफुल्लिया सुंदर सुगण सुजान बेता गुण गोविंद अमुल्या उड़ भाग पाया दुख गवाया भई पूर्ण आस जियो मिलवंत नानक शरण तेरी मिट्टी जमकी त्रास दियो श्लोक साध संगत बिन ब्रह्मोई करती कर्म नेक कोमल बंधन बाधिया नानक कर्म लेख जो भाणे से मिलया विछोड़े पी आप नानक प्रभ शरणागति नानक प्रभ शरणागति जाका वड़ प्रताप छंत ग्रीखम रुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़ जेठ अखाड़ काम जियो प्रेम बिछो दुहागणी दृष्णा करी राम जियो न दृष्ट आवै मरत हावै महागार मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावै संग माया रुठिया कर पाप जो नी पै पीत होई दे सासन जाम जियो ब्रह्मत नानक और तेरी राग पूर्ण काम जियो श्लोक शरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन न जाए मन तन अंत रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साज ने जन्म जम के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत शांत रुत बरस से लिया सावण भादवे आनंद जियो कण उन्नव उठे जल थल पूरिया मकरंद जियो रपूर असर बठाई हर नाम नवनित ग्रह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सावतरे प्रह रंग जागे न छिद्र लागे कृपाल सत बख्शिंद जियो ब्रत नानक हर कंत पाया सदा मन पावन जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो कब पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मेलन हार मिल मिल बेसाद ना उपजै तिल पल रहन न जाए हर साधै शरणागति नानक आस पुजाए छंत रुत सरद अडम्बरो असुकत के हर प्यास जियो खो जंती दर्शन फिरत कब मिलिया गुणतास जियो बिन गंत प्यारे न सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जैसे तना ईत ऊत दै दिस अलोकन मन मिलन की प्रप्यास जियो बिनवंत नानक धार कृपा मिलो प्रभ गुणतास जियो श्लोक जलन बुझी सीतल पहे मां तन उपजी शांत नानक प्रपूर्ण मिले दुतिया बिन सी प्रा साथ पठाए आप हार हम तुम ते ना ही दूर नानक प्रम पै मिट गए रमण राम परपूर शांत रुत शिशियर शीतल हर प्रगटे रुत शिशियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो जलन बुझी दर्श पाया मिन से माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेव्या हर डोर शिंगार सब रस गुण गाओ लख पेव्या पाहो भगत गोबिंद वांछत जब न सक जोह जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिछो जियो श्लोक हर तन पाया सुहागणी

प्रमित नाद विनोद अनंद कोड प्रेम प्रीतम संग बने मन वांछित फल पाया हर नानक नाम बने चंत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाव मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याय सेज सुंदर सोहिया वण त्रेंद्र पवन पै हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच पुनी मन जपिया निर्मल मन जियो मेनु अत नानक नित करो रणिया हर मिले श्री तर कंत जियो श्लोक संसाई जी के पावजल तारण हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जन जप

नानक तिन बल हारना, हार जाप उतरे तीर छंत, चरण विराजित सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो, आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो, हर रंग राते सहज माते तिल न तेरना मन ते बिसर है, तज आप शरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीशर है, गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आद को आदेश जियो, बिनवंत नानक मैं थारो जुग जुगो एक वेश जियो, राम करी मल्ला पल्ला दखनी ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार किया जिनचित, ओंकार सहल जुग भय ओंकार वेद निर्मय, ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे, ओनम अखर सुनो विचार ओनम अखर त्रिपावन सार, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहा सस्य सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै मानक मोती, समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंतर अंत साचा, गुरमुख देखै सार संभाले बिन साचे जग काचा, तदै धर्म तरे तरमापुर गुणकारी मन धीरा, तदै धूल पड़े मुख मस्तक कंचन भय मनुरा, तर तरनी तर आपे जोनी तोल बोल सच पूरा, करते कीमित करता जाने कह जाने गुरसूरा, ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गैर कबीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लहया मंद सार सुखाया, आपे गुरमुख आपे देव आपे अमृत पियाया, एको एक है सब कोई हम गर्भ व्यापे, अंतर बाहर एक पछाणे इउ कर मैं संजापे, प्रभ नेड़ै हर दूर न जानो, एको सृष्ट सबाई एक ओंकार और नहीं दूजा, नानक एक समाई इस करते को क्यों गह राखो अफरियो तड़ियो ना जाई, माया के दीवाने प्राणी झूठ गौरी पाई, लाभ लो मोहताज विगुते इब तब फिर पछताई, एक सरे वह तागत मित पावे आवन जान रहाई, एक जार रंग एक रूप पावन पानी अग्नि स्वरूप, एको पवर पवै त्यो लोए एको बूझै सूझै पत होए, ज्ञान ध्यान ले संसर रह गुरमुख एक विरला को लह, जिसनो दे कृपाते सुख पाए गुरु द्वारे आख सुनाए, ऊरम धूरम जो तू जला तीन भव मैं गुरु गोपाला, ऊग व्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने घर आवे, ऊन बरसै नीजर धारा उत्तम शब्द सवारण हारा, इस एक का जान पे आपे करता आपे दियो, उगवे सुर असुर सिंगार है उचो देख शब्द विचार है, ऊपर आद अंत हलोए आपे करै कथै सुनै सोए, ओ विदाता मान तन दे ओ विदाता मान मुख सोए, प्रभ जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पत होए, राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनवा मार, रात दिनांत रह रंग राता तीन भावन जग चारे जाता, जन जाता सो तिस ही जेहा आत्मनिर्मायण सीज देहा, रैसी राम हृदय एक पाए अंतर शब्द साच लिवलाए, रोस ना कीजै अमृत पीजै रोस ना कीजै अमृत पीजै, रह नहीं संसारे राजे राय रंग नहीं रहना, आए जाए जुग चारे रहन कहन ते रहना कोई, किस पै करो बिनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरुदेव है पतमती, लाज बिनंती मर गई घूंघट खोल चली, सास दीवानी बावरी सिर ते संक टली, प्रेम बुलाई रली सो मन मह शब्द नंद लारती लाली पही गुरमुख पही नचिंद, लाहा नाम रतन जप सार लभ लो बुरांकार, लाड़ी चाड़ी लायत बार मन मुख अंधा मुग्ध गवार, लाहे कारण आया जग होए मजूर गया ठगाए ठग, लाहा नाम पूंजी वैसा नानक सच्ची पत सच्चा पात शाह, आय विगुता जग जम पंथ आय न मिटन को समरथ, आथ सैल नीच कर होए आथ देख निवै जिस तोए, आथ होए ता मुग्ध स्याना भगत बेहूना जग बौराना, सब मैं वरता एको सोए जिसनों कृपा करे इस प्रगट होए, जुग जुग थाप सदा निर्वैर जन्म मरण नहीं तंधा तहर,
जो दिसै सो आपे आप आप पाए आपे कट थाप आप गोचर धंधा लोई जो जगत जग जीवन सोई कर आचार सत सुख होई ना विहुणा मुक्त के होई विण ना वै विरोध शरीर क्यों ना मिले काटे मन पीर वाट वटाऊ आवे जाए क्या ले आया क्या पल्ले पाए विड़ना वै तोटा सब थाए ला हमले जा दे बुझाए वणज व्यापार वणज व्यापारी किसना वै कैसी पत सारी विड़ना वै कैसी पत सारी गुण विचारे ज्ञानी सोए गुण मैं ज्ञान प्राप्त होए गुणदाता विरला संसार साची करनी गुर विचार अगम गोचर कीमत नहीं पाए ता मिलिए जा लय मिलाए गुणवंती गुण सारे नीत नानक गुरमत मिलिए मीत काम क्रोध काया को गाल जो कंचन सुहागा ढाल कस कस वटी सह सताओ नदर सरा वनी सजड़ा जगत पशु अहंकार कसाई कर करता करने कर पाए दिन की ती दिन कीमत पाई होर क्या कहिए किश कहन ना जाए खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गहिमा सतगुर दिया खरा खरा आख है सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खाद पियंत मोए नहीं जानिया खिन मैं मुए जा शाद पछानिया अस्थिर चीत मरन मन मानिया गुर कृपा ते ना पछानिया गगन गंभीर गगन अंतरवास गुण गावे सुख सहज निवास ज्ञान आवे आए ना जाए गुर प्रसाद रहल बुलाए गगन अगम अनाथ जोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे ना जूनी गुरमत सार होर ना बेहूनी कर दर फिर थागी बहुत तेरे जात असां खांत नहीं मेरे केते मात पिता सुतिया केते गुर चेले फन हुआ काचे गुरते मुक्त ना हुआ केती नारवर एक समाल गुरमुख मरन जीवन प्रभ नाल दैदिस ढूंढ ढूंढ करै मह पाया मेल पया सतगुरु मिलाया गुण गावै गुरमुख बोलै गुरमुख गावै गुरमुख बोलै गुरमुख तोल तुलावै तोलै गुरमुख आवै जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मजन चज अचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावै पार चंचल चेत ना रही ठाए चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कमल और तारे चीत चिर जीवन चेत नित नीत चिंतत ही दिसै सब कोय चेतै एक तही सुख होए चित वसै राचै हर नाए मुक्त भया पत स्यो कर जाए चीजै दे खुलै एक गंड चया नित देखो जग हंड धूप छाव जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त घर आने छाया छूची जगत भुलाना लिखिया कर तुरे परवाना चीजै जो बन जरुआ सरकाल काया छीजै पही सिबाल जा पया प्रभु ते हलोए जुग जुग दाता अव न कोए जो भावै त्यो राखै राख जस जाचो देवै पत साख जाग जाग रहा तुद भावा जा तू मेलै ता तुझै समावा जय जय कारज पूजक देश गुरमत मिलिया बीस इक्कीस चख बोलन क्या जग स्यो वाद झूर मरै देखै परमात जन्म होए नहीं जीवन आसा आए चले पै आस निराशा चोर चोर चख माटी रल जाए का ना चंपै हर गुण गाए पाए नवनित हर कै नाए आपे देवै सहज सुभाए ज्ञानो बोलै आपे बूझै आपे समझै आपे सूझै गुर का कहया अंक सुमावै निर्मल सूचे साचो भावै गुर सागर।

गुर की करनी काहे तावो। नानक गुरमत साच मावो टूटा नेह के बोला सही, टूटा बाह तो हूं दिस गही। टूट प्रीत गई बुर बोल, गुरमत पर हर छाड़ी ढोल। टूटे गंठ पड़े विचार, गुर शब्दी कर कार सार। लाह साज न आवे तोटा, त्रिपावन ठाकुर प्रीत मोटा। ठाकुर मनवा राखो ठाए, ठैक मोई अवगुण पछताए। ठाकुर एक सुबाई नार, बहुत विस्करे कूड़ियार। पार कर जाती ठाक रहाई, महल बुलाई ठाक न पाई। शब्द स्वारी साथ प्यारी साई, सहागन ठाकुर तारी। डोलत डोलत है सखी, फाथे चीर सिंगार। फाटे चीर सिंगार, डापण तन सुख नहीं। बिन डर बिन ठी डार, डर पुमी कर अपने। डीठी कंस जाड़, डर राख्या गुर अपने। निरपोना वखाण, डूगर वास्ते खाकड़ी। जब देखा नहीं दूर, तिखानवारी शब्द मन। अमृत पिया भरपूर, देह देह आखे सब कोई। जय पावे तै दे, गुरु द्वारे देव सी। तिखाने वारे सोए, टंडोलत ढूंढ थौ फिरी। टह टह पवे करार, पारे टहते टह पे। होड़े निकसे पार, अमर जाची हर मिले। तिन कहो बल जाओ, तिन की तूड़ खोली है। संगत मेल मिलाओ, मन दिया गुर अपने। पाया निर्मनाओ, जिन नाम दिया तिस सेव साथ। इस बलहारे जाओ, जो उसारे सो ठासी। तिस बिन अवर न कोए, गुर प्रसादे तिस संभणा। ता तन दुख न होए, ना को मेरा किस गही। ना को हुआ न होग, आवन जान विगुची है। दुबदा व्यापै रोग, ना विहुणे आदमी। कलर कंध ग्रंत, विण ना वै क्यों छूटी है। जाहिर सातल अंत, गणत गणा वै अखरी। अगणत साचा सो।

0: तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पांच तत्व चुगै मिल एक से निरको फासदा रंच उड़े ता बेगुल बेगुले ताके चोकणी पंख टूटे फाही पड़ी अवगुण भीड़ बनी बिन साचे क्यों छुटिया हर गुण कर्म मणि आप छटाए छुटिया वड्डा आप धनी गुर प्रसादी छुटिया कृपा आप करे अपने हाथ वडाइया जै भावै तै दे थर थर कंपै जीअड़ा थान विहुणा होए थान मान सच एक है काज ना फिटे कोई थिर नारायण थिर गुरु थिर साचा विचार स्वर नर नाथ नाथ तू निधाराया दार सर्वे थांत नंतरा सर्वे थांत नंतरी तू दाता दातार जह देखा तै एक तू अंत ना पारा बार थान तिरंतर रव रहा गुर शब्दी विचार अण मंगया दान देव सी वड्डा अगम पार दया दान दयाल तू कर कर देखण हार दयात करै रब मेल लह खिन मैं ढाहे उसार दाना तू बिना तू ही दाना कैसर दान दालत पन्न दुख दलन गुरमुख ज्ञान ध्यान तन गय बै चूरिया तन मैं चीत गवार तन विरली सर संचया निर्मल नाम प्यार तन गया ता जान दे जेरा चै रंग एक मन दी जै सिर सौपिए भी करते की टेक तंदा तहावत रह गए मन मैं शब्द नंद दुर्जन ते साज भए पेटे गुर गोविंद बेन बन बन फिरती बन बन फिरती ढूंढती बस रही कर बार सतगुर मिली मिल रही जन्म मरण दुख निवार नाना करत ना छुटिया विण गुण जमपुर जाह ना तिस ए ना ओह है अवगुण फिर पछताह ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस धर्म त्यान विण ना वै निरपौ कहा क्या जाना अभिमान था कर ही के वपड़ा हाथ नहीं ना पार ना साजन से रंगले किस पै करी पुकार नानक प्रयो प्रयो जे करी मेले मेलन हार जिन विछोड़ी सो मेल सी गुर का हेत प्यार गुर का हेत पार जिन विछोड़ी सो मेल सी गुर का हेत पार पाप बुरा पापी को प्यारा पाप लदे पापे पा सारा पर हर पाप पछाणे आप ना ते सोग विजोग संताप नरक पड़न तो क्यों रह क्यों बंचै जमकार क्यों आवण जाना विसरै झूठ बुरा खै काल मन जंजाली वेड़िया पी जंजाला माह फिर ना वै क्यों छुटिया पापे पचै पचाए फिर फाही फासे कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ फाथा चोग चुगै नहीं बूझै सतगुर मिलै ता आखी सूझै ज्यो मछली फाथी जम जाल विण गुर दाते मुक्त ना पहाड़ फिर आवै फिर जाए एक रंग रचैर है लिव लाए इव छूटै फिर फास ना पाए बीरा बीरा कर रही बीर पहे बहराए बीर चले कर अपने बहन बिरह जल बहन बहन बिरह जल जाए बाबुल कह कर बेटड़ी बाली बाले ने जो जे लोड़े वर कामणी सतगुर सेवै ते बिरलो ज्ञानी बुझणो सतगुर साच मिले ठाकुर हाथ वडाइया जय भाव है तै दे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए ए बाणी महापुरख की निज करवासा होए पन पन घड़िया कड़ कड़ भजै ढाहे उसार उसरे ढाहै सर पर सोख है पी पर भुख है समरथ वे परवाह है परम भुलाने पहे दीवाने विण पा गया क्या पाई है गुरमुख ज्ञान डोरी प्रपकड़ी जिन खिंचै तिन जाइयै हर गुण गाए सदा रंग राते बहुड़ न पछोताइयै भुबै भालै गुरमुख बूझै ता निज घर वासा पाइयै भुबै भौजल मार्ग विखड़ा आसा आस निराशा तरियै गुर प्रसादी आपो चीन जीवत्या इव मरिया माया माया कर मुए माया किसै न साथ हंस चले उठ डुमणो माया भूली आथ मन झूठा जम जोहया अवगुण चले नाल मन मह मन उलटो मरै जे गुण होवै नाल मेरी मेरी कर मुए विड़ना वै दुख भाल गढ़ मंदिर महला कहा जो बाजी दीवान नानक सच्चे नाम वेण झूठा आवण जान आपे चतर स्वरूप है आपे जाल सुजाल जो आवे से जाहे फुन आए गए पछताए लख चौरासी मेदनी कटै न वधै उताए से जन उभरे जिन हर पाया से जन उभरे जिन हर पाया कंधा मुआ विगूती माया जो दिसै सो चाल सी किस को उम्मीद करे हो, जियो संपो अपना तन मन आगे दियो। अस्थिर करता तू तनी तसही की मैं ओठ गुण की मारी हम वही शब्द रती मन चोट राणा राव न को रह रंग ना तुंग फकीर वारी आपू अपनी कोई न मंदा धीर राह बुरा पिहावड़ा सर डूगर असगा मैं तन अवगण चुरमुई विण गुण क्यों कर जा गुणिया गुण ले ब्राह्मले क्यों तिन मिलो प्यार नहीं जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण भी वसै नाल सत बिन सतगुर गुण ना जापनी चिचर शब्द ना करे विचार लस्करिया कर सम्मणे आए वजो लिखाए कार कमावै सिर तनी लाहा पल्ले पाए लब लो बुरियाइया छोटे मनो विसार गढ़ दो ही पातशाह की कदे ना वैहार चाकर कहिए खसम का सोहे उत्तर दे वजो गवाए अपना तख्त न बैसे से प्रीत महाथ वड़ियाइया जय भावै तै दे आप करे किस आखिया और न कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दुरी चा पाए नरक निवार नर नर साचो साच नाय वण त्रिण ढूंढत फिर रही मन में करो विचार राल तन बहुमान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम हुआ प्रभ मिले एक मन एक है पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै पर था रचना राज चीज सिरियाकार गुरमुख बेअंत आइया अंतला पारावार राड़ा रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर न कोई राड़ा गारुड़ तुम सुनो हर वसै मन माय गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पुलाए सो शाह साचा निज हर तन रास गुरमुख पूरा तिस शाबाश रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सो इना रूपा सचिया धन काचा बिख छार शाह सदाए सच धन दुबदा होए खुआर सचियारी सच संचया सचो नाम मोल हर निर्मल उजड़ो पत साची सच बोल सच मिस जान तू तू सरवर तू हंस साचो ठाकुर मन वसै हो बलहारी तिस माया ममता मोहनी जिन की ती सो जान मिख्या अमृत एक है बूझे पुरख सुजान खिवा वे हुने खप गए खून लाख संख गणत न आवे क्यों गणी खप खप मोहे बिसंख कसव पछाड़े अपड़ा कुले बद न पाए शब्द बहली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसै शरीर मन तन मुख जा पैसदा गुणंदर मंतीर हो मैं खपैख पाई सी बीजो वात वेकार जंत पाए विच पाए अन करता लग पार सृष्टि प्यो न जाने कोई त्रिष्ठा करे सुनिचो होए संपै को ईश्वर ध्याई संपै पूर्व लिखे की पाई है संपै कारण जाकर चोर संपै साथ न चाले होर मिन साचे नहीं दरगा मान हर रस पीवे छुटे निदान हिर धेर से सखी होए रही हैरान हों करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हर दौर कंकण घने कर था की सिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाया हर स्यो प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यो रखो प्यार हर जपिए हर त्याइए हर का नाम आधार लेख ना बिटी है सखी जो लिखिया करतार अपे कु कारण जिन किया कर कृपा पगतार करते हाथ वड़ियाइया बूझो गुर विचार लिखिया फिर न सकिया जो पावी त्यों सार नद तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मन मुख भूले पच मोए उबरे गुर विचार जे पुरख नद न आवे तिसका क्या कर कहया जाए बलहारी गुर अपने जिन हृदय दिता दिखाए पादा पढ़िया आखिया विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोदै तत लह राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खट्टे बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनी सूझ बूझ नह काए पादा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संगरो लाहा जग मैले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िया शब्द सुसार नानक सो पढ़िया सो पंडित बिना इस राम नाम गलहार राम कुरी मला पहला सिद्ध गोष्ठ इकंगा सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे सत सभा जयकार तिसागै रह रास मारी साचा अपर पारो मस्तकार धरी तिसागै तन मन आ गै दियो नान संत मिला सच भाई है सच भाई जस लियो क्या भवी है सच सूचा होए सा शब्द बिन मुक्त ना होए बिन मुक्त ना कोए रहो गवन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार कौन स्वाओ साच कहो दास मारी हो संजना बल जाओ कह बैसो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बह रागी क्या तुम्हारा राह हो कड़ कड़ बैस निरंतर रही है चाल सात गुर पाए सहजे आए हुकुम सिधाए नान सदार जाए आसन बह सुन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आ पछाणे सच्चे साच समाए दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पारो चरपट बोले औदू नानक देव सचा विचारो आपे आखे आपे समझाए दिस क्या उतर दीजै साच कहो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजै जैसे जल मैं कमल निराल मुरगाई नै साणे शब्द सुरत सुरत शब्द भाव सागर तरिया नानक नाम खाणे रह है एकांत एको मन वसिया आसा माह निरासो अगम गोचर देख दिखाए नानक ताका दासो सुन स्वामी अरदास मारी पूछो साच विचारो रोस ना की जै उतर दी जै क्यों पाई है गुरुद्वारो ए मन चल तो सच कर बैसै नानक नाम धारो आपे मेल मिलाए करता लागे साच प्यारो हाटी बाटी रह है निराले रूख बिरख उद्याने कंद मूल आहारो खाइए औदू बोले ज्ञाने तीर्थ नहाइए सुख फल पाइए मैल लागे काई गोरख पूत लोहारी पा बोले जोग जोगत बिदसाई हाटी बाटी नींद न आवे पर कर चित ना डुलाई मिन नावे मन टेक न टिके नानक भूख न जाई हाट बटन हाट पट्टन कर गुरु दिखाया सहज सचवा पारो खंडित निद्रा अल्पहारंग नानक तत् विचारो दर्शन पेह करो जोगिंद्रा मुंद्रा झोली खिंता बाहर अंतर एक सरे बुखट दर्शन एक पंथा इन बिद मन समझाइए पुरखा बाहर चोड़ ना खाइए नानक बोले गुरमुख बूझे जो जो देव पाइए अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हम मैं ममता दूर करी काम क्रोधन कार निवार गुर कै शब्द सो समझ परी खिंता झोली परपुर रहया नान तारे ए खरी साचा साहे साची नाई परखै गुर की बात खरी उदो खप्पर पंच पू टोपी काया कड़ा सुन मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नान गुरमुख नाम समाल कवन सुगुप्ता कवन सुमुखता कवन सु अंतर बाहर जुगता कवन सु आवे कवन सु जाय कवन सु त्रिपुन रह आसमाय कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब सुजुगता मन मुख बिनस है आवे जाय नान गुरमुख सार समाय क्यों कर बादा सर पर खाता क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधेहारा यो तत् विचार है सुगुरु हमारा दुर्मत बादा सर पर खाता की मन मुख खोया गुरमुख लादा सतगुरु मिला अंधेरा जाए नानक हो मैं मेट समाए सुन निरंतर दीजा बंद उड़े ना हंसा पड़े ना कंध सहज गफा कर जाने साचा नानक साचे भावे साचा किस कारण ग्रह तुझे उदासी किस कारण उपेक निवासी किस वखर के तुम बन जा रे क्यों कर साथ लंघावो पारे गुरमुख खोजित भय उदासी दर्शन कह ताई भेख निवासी साच वखर के हम बन जा रे नानक गुरमुख उतरस पारे कित बिद पुरखा जन वटाया काहे को तुझे मन लाया कित बिद आसा मनसा काई कित बिद आसा मनसा खाई कित पिद जोत निरंतर पाई बिंदंता क्यों खाई सार नानक साचा करो विचार सतगुर कै जन्म गमन मिटाया अनहत राते मन लाया मन सा आसा शब जलाए गुरमुख जो निरंतर पाई त्रै गुण मिटे खाई सार नानक तारे तारण हार आद को कवन विचार कथियले सुन कहा करवासो ज्ञान की मुद्रा कवन कथियले कड़ कड़ कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाई ले क्यों निरपो कर जाइए सहज संतोख का आसन जाने क्यों छेदे बहराइए गुर कै शब्द हो मैं बिख मारे तानज कर हो वह वासो जिन रच रचया तिस शब्द पछाणे नानकता का दासो कहाँ ते आवे कहाँ एहो जावे कहाँ एहो रह समाई ए शब्द को जो जो अर्थावे तिस गुर चरना तुमाई क्यों तत्तै उगतै पावे गुरमुख लगे प्यारो आपे सोता आपे करता कहो नानक विचारो हुक्मे आवे हुक्मे जावे हुक्मे रहे समाई पूरे गुर ते साच कुमावे गत मित शब्दे पाई आत को बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लहै नानक दूजे का न करनी सेवै सिख सुख खोज लहै हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणै जी जो सजाणै सोई अप मेट निराल होवै अंत सार जोगी कहिया सोई अवगतो निर्माल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाई साचै शब्द समाए लिया एक को सच एका जाने हम मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुरशाद पछाणे अंतर कमल प्रकाश थिया जीवत मरहता सब किछ सूझै अंतर जाने सर्व दया नानक ताको मिले वडाई आप छाणे सर्व जिया सच उपजै सार समावै सच सूचे एक मया झूठे आवै ठवर न पावै दूजे आवा गौण पया आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखै बख्श लिया एक आवेदन दूजै व्यापी नाम रसायण विसरिया सो बूझै इस आप बुझाए गुरु कह शब्द समुक्त पया नानक तारे तारण हारा हमें दूजा पर हरिया मन मुख भूलै जम की कान पर कर जो है हाणे हाण मन मुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसाण शब्द न चीनै लवै कुबाण नानक नानक सच ते सुख जान गुरमुख सच का पहु पावै गुरमुख बाणी घड़ कड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साच समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै त्रिया तारी गुरमुख परचै सुशब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतरबिद जानी गुरमुख पाइया लख पार नानक गुरमुख मुख दुखत मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निब है सब परवार गुरमुख जपिया अंतर प्यार गुरमुख पाइया शब्द चार शब्द भेद जाने जाना इना खमै जाल समाए गुरमुख धरती सच है साजी तिसमें ओपत खपत सुबाजी गुर कै शब्द रुपै रंग लाए सच तो पत स्यो कर जाए सार शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नावै क्यों साच समावै गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख भव जल तरिया सच सुद्धि गुरमुख सर अपसर बिद जाने गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार्यो तारे नानक गुरमुख शब्द निस तारे नामे राते होमै जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते जोग जोग विचार नाम रते पावै मुख द्वार नाम रते त्रिभुवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ठ होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान विचार बिन नावै बोलै सब बेकार नानक नाम रते तिन को जयकार पूरे गुर ते नाम पाया जाए जो जो सच रह समाए बारे मैं जोगी परमाए सन्यासी छह चार गुर कै शब्द जो मर जीवै सुपाए मोख द्वार मेरे शब्द है सब दूजा लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे से वड़ भागी जिनी सच रखिया उर धार गुरमुख रतन लह लिव लाए गुरमुख परख है रतन सुभाए गुरमुख साची कार कुमाए गुरमुख साचे मन पति आए गुरमुख अलख लखाए तुस भावै नानक गुरमुख चोट न खावै
1: ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਤਰਕੈ ਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾ ਭਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਭੇਦ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਰ ਬਿਰੋਦ ਗਵਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਲੀ ਕਣਤ ਮਿਟਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਸਨ ਪਛਾਤਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਨਾ ਪਵੀ ਥਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਨੁਆਤ ਟੁਲਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਬਿਖਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਿਸਿਆ ਡਸੇ ਮਰਵਾਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘਾਟੇ ਘਾਟ ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਅਵਗੁਣ ਮੇਟੇ ਗੁਣ ਸਤਾਰ ਮੁਕਤ ਮਹਾਂਸੁਖ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ ਤਨ ਹਟੜੀ ਇਹੋ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੱਚ ਵਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਧਿਓ ਸੇਤ ਵਧਾਤੇ ਲੰਕਾ ਲੁੱਟੀ ਦੈ ਸੰਤਾਪੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰੀ ਹੋਇ ਰਾਵਣ ਭੇਦ ਭਵਿਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਚਾਇਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰ ਭਾਣ ਤਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਤੇਤੀ ਸੁਧਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਚੁੱਕੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸਹਿ ਧਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਸਤ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧ ਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਾਤੂਤਮ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਹੋਏ ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਬੇਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਬਾਲੇ ਇਸ ਕਥਾ ਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਵਜਲ ਸਭ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰ ਪਵਣ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜੁਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਮੇ ਅਗਰ ਨਿਵਾਰੀ ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ ਸਾਰ ਜਿਤ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਣਾ ਹਾਰ ਹਿਬੇਖਾ ਕਰਮੰਦਰ ਅਗਨ ਪਰਾਹਨ ਕਵਨ ਗੁਫਾ ਜਿਤ ਰਹੇ ਅਵਾਹਨ ਇਹ ਤੁਤ ਕਿਸ ਕੋ ਜਾਣ ਸਮਾਵੇ ਕਵਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਨੇ ਸਮਾਵੇ ਹੋ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿਚੁਕ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਮਿੱਟੀ ਕੁਹੋਵੇ ਜਕੜਾ ਮਨ ਮੁਗਵਾਰ ਸਤ ਕਮਾਈਏ ਖਾਈਏ ਸਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕੋ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਹਾਣੇ ਸੱਚ ਪੈਰਾ ਤਾ ਗਰਬ ਨਵਾਰੇ ਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀ ਆ ਤਨ ਮਸੀ ਤ ਰੰਗ ਰਗੀਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੇਖਿਆ ਅਗਨ ਨਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਕਵਨ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹਿਵੇ ਘਰ ਛਾਇਆ ਕਵਨ ਮੁਖ ਸੂਝ ਤਪਿਤ ਪਾਇਆ ਕਵਨ ਮੁਖ ਕਾਲ ਜੋਤ ਨਿਤ ਰਹੇ ਕਵਨ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਤ ਰਹੇ ਕਵਨ ਜੋਧ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਖਤ ਸਚ ਜੋਤ ਪਰ ਸਸਕਾਰ ਸੂਰ ਵਸੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਆਪੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ ਗੁਰਪਰਚੇ ਮਨ ਸਾਹ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਖਾਏ ਨਾਮ

अंतर सुनन बाहर सुनन तर पवन सुन मसुन चौथे सुन है जो नर जाने ताको पाप न पुन कटकर सुनका जाने भयो पुरख रंजन दियो जो जन नाम रंजन राता नानक सोए पुरख बदाता सुनो सुन कैसा कोई अनाथ सुन कहाँ ते हो अनाथ सुन रते से कैसे जहते उपजे ते सी जैसे वो जन्म ना मर हे ना आव है जाए नानक गुरमुख मन समझाए नौ सरसो बरदास में पूरे ते अनाथ सुन बजावे तूरे साचे राचे देख हजूरे घट घट साच रहा पर पूरे गुप्ती वाणी प्रगट होए नानक परख लै सा सोए सहज पाए मिलिए सुखो वै गुरमुख जागे नींद न सोवै सुन शब्द परंपर तारे कहते मुख शब्द तार गुर की दीखिया सी सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्राते कबो दु जवाबे सुखद ठाए क्यों तत् न बूझे चोटा खाए जंदर वादे कोई न राखे बिन शब्दे ना ही पत साख क्यों कर बूझे पावे पार नानक मन खुना बूझे गवार कबुद मिटे गुर शब्द विचार सतगुर भेटे मुख द्वार तातन जिने मन मुख जल जाए दुरमत बिछड़ चोटा खाए माने हुकुम सवे गुण ज्ञान नानक दरगह पावे मान साच बखर तन पले होए आप तरे तारे पी सोए सहज रता बूझे पत होए ताकी कीमत करे न कोई जै देखा तरह समाए नानक पार परे सच पाए सो शब्द का कहां बास कथिया रहे जे तरिए पावजल संसार हो त्रै सतंगल बाई कहिए तिस को कवन आधार बोले खेले अस्त्र होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्राण वै अपने मन समझाए गुरमुख शब्द सच लेव लागे कर नदरी मेल मिलाए आपे दान आपे भी न पूरे पग समाए सो शब्द को निरंतर वास रखन जा देखा तै सोई पवन का वासा सुन न वासा अगल करा तर सोई नदर करे शब्द घट में वसे बिचो परम गवाए तन मन निर्मल निर्मल वाणी नाम मन वसाए शब्द गुरु भव सागर तरिए तोते को जाने चिहन बार निशाया माया नानक शब्द पछाण त्रै सतंग लवाई औदू

तेरा लुचिया बिन कर्मा पाया न जाए, अंत लोभ कर है दूजे पाए खवाए, तिन जमन माना चुके हमें बेच दुख पाए, जिनी सतगुर सिंह चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तब न हो भी ना हो दुख सहाय, नानक गुरमुख उभरे सच्चे शब्द समाहे पौड़ी, आप लिवत सदा रहे होर धंधे सब धावे, आप ने चला चल है होर आव हे जाव हे, सदा सदा हर त्याई गुरमुख सुख पाव हे, निज कर वासा पाइए सच सिफत समाव हे, सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्चे नाई, श्लोक महला तीजा, सच्चा नाम त्याए तू सबो वरते सच, नानक हुक्मे जो बुझै सो फल पाए सच, कथनी वदनी करता फिरे हुक्म न बुझे सच, नानक हर का भाणा मन्ने सो भगत हुए, बिन मन्ने कच्चन कच, महला तीजा, मन मखबोल न जाननी उना अंदर काम क्रोध हंकार, ओए थाओ कथाओ ना जाननी उना अंतर लो बेकार, ओए अपने सुआए आए बह गल्ला करे उना मारे जम जंदार, अगे दर गाली खा मंगिए मार खुआर की चे कुड़ियार, ए कूड़े की माल क्यों उतर है कोई कड्डो एहो विचार, सतगुर मिले ता नाम दड़ाए सब कलवे कटन हार, नाम जपे नाम ओरा दे तिस जन को करो सब नमस्कार, मल कूड़ी नाम उतारी न जप नाम हुआ सचियार, जन नानक जिस दे चलत है सो जीवो देवनहार, पौड़ी तुर जे वडदाता नाहे किसाख सुनाइए, गुर प्रसादी पाए जिथो होमे जाइए, रस का साधा बहरा सच्ची वडियाइए, जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मिलाइए, घाटे अंतर अमृत रखियो गुरम किसे पे आई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, श्लोक महला तीजा, वाह बाणिया कहानिया पुत पुत करे, जे सतगुर पावे सो मन लैन सही कर्म करेन, जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास, सुख नारद बचन सब श्रेठ करेन, सच्चे लाए सच लगे।

सो ए पौड़ी काया अंदर गर्कूट है शब्द संतर देशा पे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सेहट साजियन सब गुप्त रखे सा गुरु सेवा ते जानिया सच प्रगटिए सा सब के सच्चे हो सच है गुरु सोजी पाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सची नाई श्लोक महला पहला सावन रात हाड़ दे काम करो दो खेत लभद्र दरोक लब बत रोग भी उहाली राह कहे तो हल विचार बेकार मनो कमी खटे काय नानक लेख मंगी ओत जनिंदा जाय महला पहला पौ पुए पवित पानी सत संतोख बलेद हल हलीमी हाली चेतो चेता बत्तर भक्त संजोग नौ बीज बख्शीस बहुल दुनिया सगल दरोग नानक करमी कर्म होए नानक नदरी कर्म होए जावे सगल बजोग पौड़ी मनमुख मोग वारे दूजे पाए बोले दूजे पाए सदा दुख है नित नीर बरोले गुरमुख नाम त्याई महतात कढोले अंतर प्रगास घट चानना हलत दा टोले आपे भरम भलाएं दा इश कह न जाई

तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही रहो। तेरे भरोसे मगर बसो मेरे तन की तप्त बुझाई, पहले दर्शन मगर पायो फन काशी बसे आई। जैसा मगर तैसी काशी हम एक कर जानी, हम निर्धन ज्यो यो धन पाया मरते फूट गुमानी। करे गुमान चुवे ते सूला को काढ़न को नाही, अजे सो चोव को बिलल बलाते नरके कोर पचाही। कवन नर क्या स्वर्ग बिचारा संतन दूरा दे, हम काहू की कार न कटते अपने गुर पर सादे। अब तो जाय चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पाणी, राम कबीरा एक पय है कोई न सके पछानी। संता मानो दूता डानो एक टवारी मेरी, दिवस सैन तेरे पाप परोसो के चवर कर फेरी। हम कुकर तेरे दरबार पौके आगे बदन पसार रहो, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया न जाई। तेरे द्वारे तुम सहज की माथे मेरे दगाई, दागे हुए सुरन मैं जूझे बिन दागे पग जाई। साधु हुए सो पथ पहचाने हर ले खजाने पाई, कोठरे मैं कोठरी परम कोठी विचार। गुरदीनी बात कबीर को लेव हो बात समार, कबीर दी संसार गोली निज मत भाग। अमृत रस जिन पाया थिरता का सुहाग, जे मुख वे जगाए त्री निकसे सुख। ब्राह्मण बिसर करे जाके पाए जा सब लागे सुख। पंडित हर न कहे काहे मेरे ब्राह्मण हर न कह, राम न बोल हे पांडे दोजक पर है राव। आप लोच निज कर भोजन हटे कर्म कर उधर पर हे, चौंद समाव सरा चर्च मांग हे कर दीप कलैकू पर हे। तू ब्राह्मण मैं काशी गजोला मोहे, तुहे बराबरी कैसे के बन हे। हमरे राम नाम के उबरे बेद भरोसे पांडे डूब मरहे। तर परे कनात डार साखा पोह पत्र परिया, अमृत की बाड़ी है रे तिनार पूरे करिया। जानी जानी दे राजा राम की कहानी, अंतर जोत राम प्रगासा गुरमुख बेले जानी राव। पवरे एक पोह पर असबीधा बारा रे और दरिया सोरा मदे पवन चकोरिया काशे फर फरिया। सहज सोने कबीरवा उपजा ताती जल रसोखिया, कहे कबीरो ताका सेवक जेने बिरवा देखिया। मुंद्रा मोन दया कर चोली पत्र का करो बेचारे, खिंथाए तन सियो अपना नाम करो आधार रे। ऐसा जो कमाहु जोगी जब तब संजो गुरमुख भोगी रा, बुद्ध पुत चढ़ावो अपनी सिंगी सुत मलाई। कर बराग फिर तन नगरी मान की किंगरी बजाई। पंच तत् लहर दे रख रहे नाल मताड़ी, कहत कबीर सुन रे संतो धर्म दया करवाड़ी। कवन से आकाश जे जग पितर जन्म, कवन फल पाया भवन तरन तान। चिंता मन एक निमख नायो मन लाया, गोविंदा मैं से अपराधी। जिन प्राव जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं साधी राओ। पर तन पर तन परती निंदा, पर पवाद न छूट आवागमन होत है। फोन फोन प्रसंग न टूट, ये कर कथा हो तार संतन। एक निमख न कीनो मैं फेरा, लपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मासर सांपे मो माई दया, धर्मर गुर की सेवा सुपनांतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर भक्त बचल पयारी, कैद कबीर पीजा रख वर सेवा करो तुम्हारी। जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपोक कर बजावे।

हर तुम बाटक में गुचर स्वामी सब त्यावे हर रुड़ने जिनको तुमरे बट कटाक है ते कर्म खर सिमरने जो परपंच किया प्रभु स्वामी सब जग जीवन जुगड़े ज्यो सले सल उठे बोल हरी मिल सले सल समणे जो प्रभु किया सो तुम्हें जानो हमने जानी हर गहने अंबार कोर दुष्ट तारो हम करे प्रभु सिमरने तुम जल ने हर मान सरोवर जो सेवे सा परणे जा नानक हर हर हर हर वंशे हर देव हर कृपणे नाट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर भाग रे निरवाल सब दाल पंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का करे वर आप सवार रंग रंग महल बे अंत लाल लाल हर लाल अपनी कृपा करिए।

मन मेले संत संगत सो बंती सो न कथ कथा सुख बंती सब कल कृपा लहंती हर हो लिखत लिखंती राओ हर कीत काल युग बिच उत्तम मत गुरमत कथा भजंती जिन जन सुनी मरी है जिन जादू तिह जन के कुरबानी हर कथ कथा कर जिन रस चाखिया तिह जन सब भुगलांती नानक जन हर कथा सुन त्रिवते जप हर हर हर हो बंती नट महला चौथा कोई आन सुना भी हर की हर गाल ते सको हो बल बल बाल सु हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल राओ हर का मार्ग संत बतायो गुर चल खाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसिखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभाए ते गुर के सिख मेरे हर प्रभाए जिन हर प्रभ जाने मेरा नाल जन नानक मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नाट नारायण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या पावे मन बहुत मन प्यास बहुत दर्शावे राव सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जस उपर चावे कृपा करो जिस पर कवधाते सो सदा सदा तो त्याव कवन जो कवन ज्ञान ध्याना कवन गुणी रे जावे सोई जन सोई ने जो भगता जस उपर रंगलावे साई मत साई पर सियाण जतने मखना प्रभ सरावे संत संग लग इहो सुख पायो हर गुण साधी गावे देखियो अचरज महा मंगल रूप किसे आन नहीं दे टावे को नानक मूर्चा को लायो तै गर्भ जोन कै आवै नट नारायण महला पंजवा दो पद एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद ओलहनो मैं कहु न दियो मन मीठ तुहारो कियो रहाओ आग्ञा मान जान सुख पाया सुन सुन नाम तुहारो जियो इहा उहा हर तुम ही ए गुरते मंत्र दिड़ियो जब ते जान पाई वाता तब कुशल खेम साव दियो साध संग नानक प्रकाश वान नही रे बियो नट महला पंजवा जागो पई तुम्हारी धीर जमकी तास मिटी सुख पाया निकसियो मैं पीराओ तत् बजानी अमृतवाणी तृप्ते जम बार खीरो मात पिता साजन संत मेरे संसार

जग दर सावत पहुल पिए को कर्म कमावत जे को रहतिए जग दर सावत पहुल पिए को कर्म कमावत तिन स्यों वर्तन नाहे मिलावे तिन सौ वर्तन नाहे मिलावे जे को रहतिए जग दर सावत पहुल पिए